FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाय भाषा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 7, तदनुसार 29 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की सभा।

0: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाय भाषा केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का, तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माही, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Moving the bill, Union Minister Dr. Jitendra Singh said the new legislation reaffirms the government's deep commitment to safeguard the welfare of the students of the and the youth of this country. He said at the same time it is also a reiteration of Prime Minister Narendra Modi's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country. Dr. Singh claimed that it is a milestone legislation in the history of Indian Parliament. Listing a series of paper leaks that occurred during the Congress and UPA era, Mr. Singh said there was no comprehensive law to tackle the cases

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायपासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार हैं वाणी जयराम और साथी संगीत है सतीश भाटिया का। तो लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज के कलाकार थे वाणी जयराम और साथी संगीत था सतीश भाटिया का।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। भक्ति गीतों के कार्यक्रम समर्पण में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही भजन गायक ओम व्यास को। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये पहली भक्ति रचना।

आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही भजन गायक ओम व्यास को।

भजन गायक ओम व्यास के स्वर में गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण।

FM की 101.7 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की

प्रातः के 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे बांग्ला लोकगीत। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह के 8:40 का। कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह के 9:00 का। आज इस कार्यक्रम के तहत चर्चा होगी इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर। इसके अलावा एक और चर्चा आप सुनेंगे आज इस कार्यक्रम के तहत अरुणा आसफ अली की पुण्यतिथि के अवसर पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का आनंद आप लेंगे सुबह के 9:30 पर। पूर्वाहन के 10:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। 1:20 पर आप एक बार फिर से आनंद लेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का। दोपहर के 2:55 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। दोपहर के 3:00 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार का प्रसारण होगा संध्या 4:00। संध्या के 4:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचारों का प्रसारण होगा संध्या 5:00। संध्या के 5:02 पर आप सुन सकेंगे हमारे यहां से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा यानी कि कार्यक्रम विवरण को। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का प्रसारण समय रहेगा संध्या 5:05 का। आज आप इस कार्यक्रम के तहत सुनेंगे एक ही गायिका के स्वरबद्ध चंद चुनिंदा नगमे। संध्या 5:30 पर आप सुन सकेंगे खेती कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचारों का और संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या के 6:30 पर प्रसारित होगा हमारी बहनों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम मनोरमा। संध्या 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद आप ले सकेंगे संध्या 7:15 पर। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा और 8:15 पर आप आनंद लेंगे फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि के 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि के 11:00 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 100

101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:46 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायक कलाकार मृणालिनी आखुरी को।

गायक कलाकार मृणालिनी ने आखुरी के स्वर में गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी सुबह के 7 बजा रही है और साथ ही साथ कर रही है ये इशारा कि वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा। कार्यक्रम जोहार चाईबासा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आइए करते हैं आज के कार्यक्रम जोहार चाईबासा की शुरुआत इन प्यारे प्यारे सदाबहार नगमों के साथ। तो आइए, आपका अब और ज्यादा वक्त न लेते हुए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म मेरे हमसफर के इस गीत के साथ। आवाजें हैं गायक कलाकार महेंद्र कपूर, बलवीर और साथियों की।

गायक कलाकार यशोदास और हेमांती शुक्ला के स्वरों में आपने ये गीत सुना फिल्म चश्मे बद्दूर से। आइए कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में फिल्म मंजिल से।

फिल्म मंजिल से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म कभी कभी से।

फिल्म कभी कभी के इस गीत को आपने सुना गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब हम आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में फिल्म आराधना से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन है एसडी वर्मन की।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: गायक कलाकार रोना लैला और भूपेंद्र सिंह के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म घरौंदा से। और इस गीत के बाद श्रोताओं, आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ा धरा रे नाकागी आम बोले रुड़ा तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर आए को गांव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हतो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: नितम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना है यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो मुंबई कोड़ा
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायबासा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म खेल खेल में से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार किशोर कुमार और आशा भोसले की।

फिल्म फर्ज के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गायक कलाकार शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म बेताब से। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन है राहुल देव फरमन की।

गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में गाए हुए फिल्म हीर रांझा के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम जोहार चायबासा अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो सखी संगीता को विदा दें, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चायबासा, ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में प्रातः के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के रांची केंद्र से आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: खरी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
3: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
4: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
5: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये जूरिस्डिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार

0: काफी अहम रहा। एक और 16 नक्सलियों ने पुलिस मुख्यालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया तो देर रात धनबाद गिरडी सीमा पर गुप्त सूचना के आधार पर 1 करोड़ इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां तीनों को गुप्त स्थान पर उनसे पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिसिर बेसरा का सुरक्षा कवच कहा जाने वाला बॉडीगार्ड शनिचरवा ने कल झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। अब केवल असीम मंडल और उसके 5 सहयोगी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: झारखंड में SIR के तहत मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता निर्धारित समय तक फॉर्म जमा नहीं करेंगे उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा। राज्य में अब तक 99.67% इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है जबकि 31 विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है। जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में CID ने कल जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने एल ख्यांगते का पासपोर्ट जब्त कर लिया है ताकि वे बिना अनुमति देश से बाहर न जा सकें। CID ने एल ख्यांगते को आज फिर से पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने नीट के पुनर्परीक्षा में OMR शीट से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में अभ्यर्थी की याचिका पर कल सुनवाई की। अदालत ने NTA को मूल OMR शीट को सील बंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की। गौरतलब है कि प्रार्थी को वेबसाइट में अपलोड की गई OMR शीट में 660 अंक मिले हैं जबकि रिजल्ट में सिर्फ 116 अंक ही मिले हैं। राज्य के SC ST OBC वर्ग के गरीब मेधावी विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कल्याण विभाग और VIT मेसरा की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच कल MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत झारखंड सरकार अगले 10 वर्षों में 79.40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेले को लेकर बाबा धाम और दुमका का बासुकीनाथ धाम पूरी तरह तैयार है। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर आज मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दुमका बॉर्डर पर राजकीय श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कल से 28 अगस्त तक लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से 109 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में शिवलिंग पर जलार्पण करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों की उपस्थिति में कल चौकीदार परेड का आयोजन किया गया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने कहा कि सभी चौकीदारों को निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ दायित्वों का निर्वहन करने तथा जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया।
2: चौकीदारी परेड का आयोजन हम लोग अनुमंडल में किए। इसका मेन उद्देश्य था कार्य क्षेत्र है जो बीट बटा हुआ है उसमें उनका कर्तव्य क्या है उनके बारे में जानकारी प्राप्त है, क्या काम करना है उसके संबंध में उन लोगों को बताया गया। अपराध से संबंधित अपराधियों पे प्रभावी नियंत्रण कैसे किया जाए, बॉर्डर इलाके के चौकीदार है उनको भी एक्टिव किए कि आप अपने इलाके में नजर बना के रखिए कि कहीं कोई बैड एलिमेंट अगर मूवमेंट करते हैं तो उसकी सूचना हम लोग तक पहुँचाइए।
1: गिरिडीह पुलिस ने जिला मुख्यालय में मछली व्यवसायी से छिनतई करने वाले 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरिडीह SP डॉ. विमल कुमार ने बताया कि सभी अपराधियों के विरुद्ध गिरिडीह जिले के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है।
3: 23 जुलाई को पचम्बा थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल सवार के द्वारा 2,07,000 रुपए छीनने की बात सामने आई। इस पे कार्रवाई करते हुए 5 लोगों की अभी गिरफ्तारी की है और देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली 3 और जो बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबर वो भी जब्त किया गया है।
1: सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने 7,59,650 रुपए नकद और 20 पुड़िया मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव के असर से पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय है। इससे रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए 18 सदस्यीय झारखंड की टीम कल तमिलनाडु के लिए रवाना हुई। झारखंड का पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब के साथ होगा। हॉकी झारखंड के महासचिव
4: जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 कोयंबटूर में
1: का हौसला बढ़ाया।
4: जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 कोयंबटूर में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो प्रतियोगिता है जिसमें झारखंड का पहला मैच 2 तारीख को है, जिसके लिए झारखंड टीम की घोषणा की गई और टीम की के विकेट का वितरण किया गया और इस प्रतियोगिता के लिए हम लोगों ने 18 खिलाड़ी चयनित किए हैं, झारखंड टीम से खेलेंगे।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसर बेसरा की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से 8 घंटे सीआईडी ने की पूछताछ, पासपोर्ट जब्त, एजेंसी ने आज फिर बुलाया। प्रभात खबर की सुर्खी है, टाटा मोटर्स और राज्य सरकार के बीच करार, युवाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण। हिंदुस्तान ने धनबाद में कोयला कारोबारियों के 150 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और दैनिक जागरण ने पेपर लीक रोधी बिल पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच बहस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी मिसर बेसरा धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार। झारखंड में एसआईआर के तहत मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज। अब तक 99.67% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा। झारखंड हाईकोर्ट ने एनटीए को नीट पुनर्परीक्षा में ओएमआर शीट के मुकाबले रिजल्ट में कम अंक देने के मामले में मूल ओएमआर शीट बंद लिफाफे में जमा करने का दिया निर्देश। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव के असर से पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय। राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम तमिलनाडु रवाना। झारखंड का पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब के साथ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आपने सुना आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:44 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक।

कार्यक्रम माटी की महक सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, लोकगीतों के इस क्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बांग्ला लोकगीत कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला बांग्ला लोकगीत।

आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बांग्ला लोकगीत कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में।

श्रोताओं, गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में गाए हुए इस बांग्ला लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम विविधा का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आज के कार्यक्रम के सफर में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूं मैं संगीता। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार, जोहार।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हैं आपके लिए अनेकों जानकारियां लेकर। तो कैसे हैं श्रोताओं आप सभी? आशा नहीं बल्कि पूरी पूरी उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य ही व्यस्त भी होंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले श्रोताओं, हम सबसे पहले आपका देंगे धन्यवाद क्योंकि आप अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ समय निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। तो श्रोताओं, हम आपको बताते चलें कि कार्यक्रम विविधा में हर दिन हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। तो आज भी जानकारियों का ये दौर बदस्तूर वैसे ही जारी रहेगा और आज के कार्यक्रम में आप बहुत सारी नई नई जानकारियों का लाभ ले सकेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही श्रोताओं, हम आपको सबसे पहले बता दें कि आज हमारा पूरा देश मना रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो आइए आज हम आपके बारे में इसी से जुड़ी हुई बातें करते हैं। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जंगल के उस राजा की जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल बंगाल टाइगर यानी हमारे बाघ की। श्रोताओं, हर साल 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बाघों के लिए एक खास दिन की जरूरत क्यों पड़ी? श्रोताओं, ये हम सभी जानते हैं कि बाघ सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता बल्कि ये जंगल की धड़कन है। तो जब हम बाघ को देखते हैं ना श्रोताओं, तो उसकी पीली काली धारियां और उसकी रास सी चाल को देखकर आंखें ठिटक जाती है। लेकिन बाघ सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होता बल्कि वह हमारे पर्यावरण के लिए भी, या फिर हम यूं कहें कि इसे यूं ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता, ये काफ़ी अहम है हमारे पर्यावरण के लिए, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पर्यावरण का सुपर हीरो है। और अब आपके मन में ये ख्याल जरूर उठा होगा कि बाघ तो एक हिंसक जानवर है तो हम इसे सुपर हीरो या फिर जंगल का हीरो क्यों कह रहे हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं इसे बात को कहने के पीछे हमारे राज। तो श्रोताओं, बाघ जंगल के शाकाहारी जानवरों जैसे हिरण सांभर की संख्या को नियंत्रित करता है। अगर बाघ न हो तो हिरणों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे जंगल की घास और छोटे छोटे पौधों को खा जाएंगे। इससे क्या होगा, ये कि जंगल नष्ट हो जाएंगे और अगर जंगल नष्ट हो गए तो न बारिश होगी, न नदियाँ बचेगी और न ही साफ हवा। यानी हम ये कह सकते हैं श्रोताओं कि बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा और जंगल बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, प्रकृति बचेगी, और अगर प्रकृति और पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। तो अब आपके मन में ये ख्याल भी जरूर आ रहा होगा कि इस दिन को यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो आइए इसके बारे में भी हम आपको बताएं। तो श्रोताओं, बात साल 2010 की है। दुनिया भर में बाघों की संख्या घटकर सिर्फ 3200 रह गई थी। यह हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। तभी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दुनिया के 13 देश इकट्ठा हुए, वे देश जहां बाघ पाए जाते हैं। सबने मिलकर एक वादा किया कि हम साल 2022 तक बाघों की आबादी को दुगनी करने की कोशिश करेंगे। और इसी ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद से हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत हुई। श्रोताओं, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया के 70% से भी ज़्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। साल 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। उस समय भारत में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जो आज बढ़कर 50 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आज हमारे देश में बाघों की संख्या 3000 से भी ज़्यादा की हो चुकी है, और ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान और प्रकृति दोनों ही मिलकर प्रयास करते हैं तो चमत्कार होते हैं। तो श्रोताओं, खतरा लेकिन बाघों के प्रति अभी भी टला नहीं है। इस जश्न को मनाने के साथ ही साथ हमें जमीनी हकीकत से भी ये सामना करना होगा कि आज भी बाघों के सिर पर खतरे मंडरा रहे हैं। शिकार, अंधविश्वास और अवैध व्यापार के लिए आज भी बाघों का शिकार किया जाता है। सड़कों, फैक्ट्रियों और बस्तियों के लिए जंगल छोटे होते जा रहे हैं, और छोटे जंगल होने के कारण बाघ शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं, यानी कि गांव में, बस्तियों में आ जाते हैं। और जब ये बाघ गांव में, बस्तियों में या फिर हमारे घर के आसपास वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, तो मानव उन अपनी रक्षा के लिए बाघों की हत्या कर देते हैं। तो जब बाघों की संख्या कम हो रही है और बाघों के रहने के लिए भी जगह जब घट रही है, तब बाघ के भटक कर गाँव में आ जाते हैं, जिससे इंसानों और बाघों दोनों को नुकसान होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं श्रोताओं, ये कि हम बाघों को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव लाते हैं। कागज़ और लकड़ी की बर्बादी को हमें रोकना है। कागज बचाने का मतलब है पेड़ बचाना, और पेड़ बचाने का मतलब है जंगल बचाना। प्लास्टिक का इस्तेमाल को हमें बंद करना होगा। जंगलों और नदियों में प्लास्टिक के कचरे को न फैलाना हमें नहीं है। और सबसे अहम जो एक काम हमें करना है वो है जागरूकता फैलाना, अपने आसपास के लोगों को पर्यावरण और वन्य जीवों के महत्व के बारे में हमें बताना होगा। जंगल सफारी का जो नियम है हमें वो भी मानना पड़ेगा। जब भी आप किसी नेशनल पार्क में जाएं तो शांति बनाएं और कचरा बिल्कुल ना फेंकें, क्यों? और बाघ को बचाने के लिए हमें जंगलों को बचाना अति आवश्यक है, और हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम पेड़ को काटने से बचें। यदि हमारी प्रकृति हरी भरी रहेगी, हमारे जंगल हरे भरे रहेंगे, तो हमारे बाघ भी सुरक्षित रहेंगे। और यदि बाघ सुरक्षित है तो जंगल सुरक्षित है, और जंगल सुरक्षित है तो पर्यावरण या प्रकृति सुरक्षित है, और अगर प्रकृति सुरक्षित है तो निश्चय ही श्रोताओं, हम भी एक सुरक्षित हाथों में हैं। तो आइए आज इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने जंगलों को काटने से बचाएंगे और इस शानदार जीव को विलुप्त होने से रोकेंगे। बाघों की दहाड़ बनी रहे, जंगलों की शान बनी रहे। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, इस धरती की जान बचाएं। तो श्रोताओं, अभी हमने आपको जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर आए को गांव बारी करा आणखी थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहा बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हतो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: तुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा ऐसे ना करना ऐसे दुकुरन में आन्या यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
7: अन्या तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मुनि में बुरी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम को यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुकोको का कोनेर मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप लेते ना लेंगे जा हुरा रे मिना इरो जिता हुरा रे मिना इरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप लेते ना
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने

0: वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: श्रोताओं, इस विराम पर जाने से पहले हमने आपको जानकारी दी कि आज इंटरनेशनल टाइगर डे है और बाघों से जुड़ी हुई बातें हमने विराम पर जाने से पहले की। श्रोताओं, तो जैसा कि हमने आपको बताया श्रोताओं कि आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई का हमारे देश के इतिहास में एक विशेष महत्व है। तो आइए आज हम याद करते हैं भारत के महान उद्योगपति, दूरदर्शी भारतीय नागरिक, उड्डयन के जनक, भारत रत्न JRD टाटा जी को, जिन्होंने इस देश को उड़ना सिखाया है। तो श्रोताओं, आज इस महानायक की जयंती है। श्रोताओं, जब हम टाटा नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में सिर्फ एक व्यापारिक साम्राज्य नहीं बल्कि विश्वास, मूल्य और राष्ट्र निर्माण की तस्वीर उभरती है। सन 1904 में जन्मे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने महज 34 साल की उम्र में टाटा समूह की कमान संभाली थी। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं लगाई श्रोताओं, बल्कि आज़ाद भारत की बुनियाद को मजबूत करने का सपना देखा था। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि 1932 में जब भारत में हवाई जहाज की कल्पना भी मुश्किल थी, तब JRD टाटा ने देश की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की शुरुआत की थी, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। पहली उड़ान उन्होंने खुद कराची से मुंबई तक उड़ाई थी। तो श्रोताओं, जब आप किसी काम में पूर्णता हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उत्कृष्टता अपने आप मिल जाती है। ये बोल हैं JRD टाटा के। श्रोताओं, उन्होंने व्यापार को मुनाफे से नहीं जोड़ा, बल्कि कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की शिफ्ट, प्रोविडेंट फंड और मातृत्व लाभ जैसी चीज़ें भारत में सबसे पहले टाटा ने ही शुरू की, जिन्होंने बाद में जिन्हें देश के कानून में शामिल कर लिया गया। JRD टाटा जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने समाज को क्या दिया और इसका हमारे देश पर, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज इस महानायक की जयंती पर आइए हम सभी उनके इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और भारत के इस अनमोल रत्न को आकाशवाणी चायबासा परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दें। तो श्रोताओं, अभी हमने आपसे बात की महानायक जे आर डी रतन टाटा जी के बारे में। आइए अब इस चर्चा के बाद हम आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी इस गीत के साथ हमने आपका मनोरंजन किया। आकाशवाणी चाईबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम विविधा का, आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए अब कार्यक्रम के जानकारियों के दौर को और भी आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि आज हम आपको आज की तिथि यानी कि 29 जुलाई से जुड़ी हुई भारतीय इतिहास के महत्व को बता रहे हैं, तो श्रोताओं, आज का दिन हमारे लिए और भी खास बनता है क्योंकि आज भारत रत्न अरुणा आसफ अली जी की पुण्यतिथि है। तो आइए इनके बारे में हम आपको संक्षिप्त रूप से बताते हैं। तो श्रोताओं, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी और महान वीरंगना भारत अरुणा आसफ अली जी की आज पुण्यतिथि है। अरुणा जी केवल एक नाम नहीं है श्रोताओं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की वो ज्वाला थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को भला कौन भूल सकता है, जब मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में देश के शीर्ष नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। तब 33 वर्ष की एक निडर महिला ने आगे बढ़कर तिरंगा फहराया और पूरे देश में क्रांति की अलख जगा दी। वह महिला कोई और नहीं थी श्रोताओं, वो थी अरुणा आसिफ अली। श्रोताओं, ब्रिटिश सरकार इनसे इतनी खौफजदा थी कि इन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने इनाम तक घोषित कर दिया था, लेकिन ये भूमिगत रहकर गुप्त रेडियो और पत्रिकाओं के माध्यम से देश के युवाओं को एकजुट करती रही और आज़ादी के बाद भी इन्होंने समाज सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। ये दिल्ली की पहली मेल मेयर बनी और जीवन भर गरीबों, महिलाओं और वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रही। इनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए इन्हें पद्म विभूषण और मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। श्रोताओं, 29 जुलाई सन 1996 को ये महान वीरांगना हमसे शारीरिक रूप से विदा हो गई, लेकिन इनका साहस, देशभक्ति और विचार आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। तो आइए आज इनकी पुण्यतिथि पर हम सभी इनकी देशभक्ति और त्याग को नमन करें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प करें। आज हमारे देश की इस महान महानायिका अरुणा आसिफ अली को आकाशवाणी का चाईबासा परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कोटि कोटि नमन करता है। श्रोताओं, तो अभी हमने आपको जानकारी दी भारत रत्न अरुणा आसिफ अली जी के बारे में। और श्रोताओं, अब इसके साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी भी अब ये इशारा कर रही है कि कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो रहा है। पर विदा लेने से पहले हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको जो जानकारियाँ दी वो आपको कैसी लगी, वो आप खत के माध्यम से हमें अवश्य ही लिख भेजें। आपके खतों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आगे भी रहेगा। तो श्रोताओं, खत लिखने के लिए आप अपना पता नोट करें। कार्यक्रम विविधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा। चाईबासा का पिन कोड नंबर है 833201। खत में आप अपना पूरा नाम और पता अवश्य ही हमें लिख भेजें। और हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी सुझाव या फिर कोई शिकायत या फिर कोई ऐसी चर्चा या विषय जिसे आप इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हो वो हमें आप अवश्य ही लिख भेजें।
तो श्रोताओं, अब इसी के साथ ही हमारे स्टूडियो ने की घड़ी ने अभी इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। कल आपके साथ इस कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 9:31 हो चुके हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं हमारा आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

कार्यक्रम रसरंजन सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म अनजाना से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की।

गायक कलाकार श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार के युगल सुरों में ये गीत आपने सुना फिल्म गुरु से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल सुरों में फिल्म मोहरा से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

आकाशवाणी चायबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गायक कलाकार पूर्णिमा और कुमार सानू के युगल स्वरों में फिल्म गोपी किसन से।

फिल्म लम्हे के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रस रंजन, ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है एनसीईआरटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी,
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी, श्रोता, हुए मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405-559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
2: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को। जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें।

और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ हाँ।
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा,
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ।
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी भी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको दबाया। हाँ यहाँ तक तो ठीक है, अब देखता हूँ कि क्या होता है। विलियम।
1: हाँ जॉन।
0: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
1: करता हूँ।
0: हाँ और सुनो।
1: हाँ
0: आप कमरे में अंधेरा करो।
1: एक मिनट।
0: हाँ
1: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
0: हाँ ठीक है। और सुनो स्क्रीन ऑन करो।
1: हाँ ठीक है। अरे वाह जॉन।
0: हाँ
1: देखो सामने।
0: अरे हाँ
1: क्या बात है।
0: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
1: हाँ जॉन हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
0: हाँ
1: जॉन बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
0: तुम्हें विलियम बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे? आइए।
3: आइए
2: इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर। हाँ, थोड़ा सा
3: इधर।
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ये तो कमाल हो गया। आपको को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अन अनबिलीवेबल मिरेकल।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आगे दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो चुके हैं। हमारा आज का अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का होगा, जो कि प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए इन कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया
4: नया मौका होती है।
5: क्या बात है, बहुत ही सुंदर उक्ति है ये। बिल्कुल, इस कथन पे आदमी अगर विचार करे तो फिर उसको क्या, उसको सफलता जरूर मिलेगी, है ना?
4: बिल्कुल, बिल्कुल भैया।

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें। जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम जोहार रांची में।
3: बिल्कुल, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पर। तो आज यानी 29 जुलाई 2026 को तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास रहेगा। रांची में अगले कुछ दिनों यानी कि इस पूरे सप्ताह लगभग 3 अगस्त 2026 तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है।
2: यानी मौसम अब मौसम ने करवट बदला है, अब चारों तरफ बारिश हो रही है ना।
3: बिल्कुल, और कल से सावन की शुरुआत भी तो हो रही है।
2: आज गुरु पूर्णिमा भी है ना।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: आज के दिन मंदिर में अच्छी खासी भीड़ लगी है। आज के दिन हम अपने गुरुओं को भी याद करते हैं ना। पर मौसम से बचाव भी बहुत जरूरी है ना।
3: बिल्कुल,
2: जहाँ तक मौसम, इस मौसम जब परिवर्तन होता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां भी घर आती है ना। अभी जैसे सर्दी खांसी फ्लू वगैरह तुम्हें, मुझे भी तो एहसास हो रहा है क्योंकि मैं बराबर जर्नी
3: करता हूं। और इस मौसम में लगभग बच्चे और बुजुर्ग ही चपेट में आते हैं।
2: हाँ, तो ऐसे में बहुत ही अपने घर में जो भी छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे कुछ छोटी छोटी बातें हम सावधानियां बरतकर हम कुछ हद तक उस पर काबू पा सकते हैं। जैसे गर्म पानी, सुषुम पानी, सुबह उठकर गुनगुने पानी का सेवन करें। अगर हल्की सर्दी खांसी अगर हो रही है तो तुरंत दवाई नहीं लें। होता है तो बहुत सारे काढ़े, तुलसी, दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना,
3: काढ़ा पीजिए, अदरक वाली चाय,
2: उसको अपनाकर हम अपने आप को छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम
3: खाना हमेशा गर्म खाएं, बासी ना खाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बहुत सारे फंगस और ये वायरस फैलते हैं तो अभी बिल्कुल बासी खाना की ओर ध्यान नहीं दें।
3: गर्म और ताजे,
2: हाँ, बाहर खाने से बचें। साथ में ये जो चटपटी चीजें, जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह, जो गोलगप्पे पानी से बनी चीजें हैं, थोड़ा तो लुभावने होते हैं बट जीभ पर थोड़ा कंट्रोल रखें ना, क्योंकि अभी वाटर बॉर्न डिजीज यानी जल से जनित बीमारियां बहुत ज्यादा प्रभावी होती है ना। तो ऐसे में अपने आप पर कंट्रोल रखें और बरसात को पार होने दें, फिर अपने जीभ का ख्याल करें।

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर GOV.IN पर।
4: हर

0: तो आज यानी 29 जुलाई को क्या क्या है उस विषय पर भी बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे जिसे कहते हैं, बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को यह दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और प्रमुख आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जैसे कि आप पहले भी बताए कि आज गुरु पूर्णिमा यानी कि व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है, जो महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, और इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। और ये तो हो गई प्रमुख दिवस और महत्व। अब थोड़ी सी चर्चा ऐतिहासिक घटनाओं पर भी डालते हैं, और इसमें बताते हैं
1: आज के
0: कि
1: दिन ही सन
0: हाँ
1: 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया
0: बिल्कुल।
1: था, है ना।
0: और 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भी स्थापना हुई थी,
1: और
0: और
1: 1958 में क्या हुआ था,
0: अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना की गई थी।
1: जो आज आज भी विश्व की सबसे
0: बिल्कुल
1: नामी गिरामी
0: हाँ।
1: संस्था है।
0: और बात करें आज किनका जन्म हुआ था, तो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति JRD टाटा का जन्म हुआ था। और
1: और आज के दिन 1959 ईस्वी में प्रसिद्ध सिने अभिनेता संजय दत्त जी का भी जन्म हुआ
0: बिल्कुल
1: था। संजय दत्त सुनील दत्त और नरगिस दत्त के पुत्र थे,
0: बिल्कुल
1: जिन्होंने फिल्मी दुनिया में काफी कुछ मुकाम हासिल किया। और एक समय तो लग रहा था कि वो शायद बॉलीवुड के महानायक यानी सुपरस्टार बन जाएंगे, पर कुछ ऐसा हुआ कि उनका ग्राफ थोड़ा गिरा। बट फिर आज भी वो अभी तक वो अच्छे से काम कर रहे हैं। हम सबों की शुभकामनाएं
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल
1: आपको, हम हैप्पी बर्थडे कहते
0: जन्मदिन
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: और आप
0: रेडियो के
1: खूब
0: माध्यम से
1: रेडियो,
0: उन्हें
1: और हम
0: जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।
1: हाँ हाँ आप खूब काम करें और ऐसे ही मनोरंजन हम सबों का करते रहें, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल। तो उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो
1: अरे
0: जाए।
1: उनके एक से एक नायाब फिल्में हैं, चाहे वो 70 80 का दशक हो, चाहे वो 90 का दशक हो।
0: बिल्कुल
1: फिर आज भी उन्होंने बहुत से एक से एक बढ़कर फिल्मों में
0: हाँ
1: उन्होंने काम किया, जिसके गाने तो कुछ कुछ हम हमारी जवान पर है। कुछ ऐसा कोई अगर अच्छा गाना तुम्हें लगता है पूजा, तो तुम सुनाओ हमारे दर्शकों को।
0: बिल्कुल।
2: हेलो, नानावती हॉस्पिटल आ रहे लाओ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे।

तो आपसे बातें तो हमें और भी करनी थी, पर वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। तो कार्यक्रम जोहार रांची से मुझे यानी पूजा को दें विदा। नमस्कार, जोहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अनूप वीरथरे से सिंधु मिश्रा की बातचीत।

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे सर। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और आकाशवाणी रांची के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जोहार।
0: कार्यक्रम में हम आपसे शुरुआत में आपके बचपन, आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बाई शहर में हुआ है
0: जी।
1: और जो मेरे फादर हैं वो एक जो है बिजनेस करते हैं, वहाँ पर वहीं पर क्रिया करते थे, और उसके बाद जो प्रारंभिक मेरी जो एजुकेशन है वो उत्तर प्रदेश में ही एक सरकारी स्कूल में हुई है, और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 10+2 तक मैं उत्तर प्रदेश के उसी छोटे कस्बे में था। वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन की क्वालिटी नहीं थी, बट उस समय में जब हम लोग स्कूलिंग के डेज़ में थे तो एक अच्छी बात ये थी कि सरकारी स्कूल में भी शिक्षक बड़े अच्छे होते थे और बड़े जो है इंस्पायर्ड होते थे, और बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स ने हम लोगों को पढ़ाया, तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की। और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी और हिस्ट्री में, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में मैंने एमए किया और एमफिल किया हिंदी साहित्य से। तो बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में बीता, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं वो नहीं थी, बट उसने हम लोगों को सिखाया कि कैसे कम संसाधनों में रहना है, कैसे जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हम लोग जो है मुझे वहीं से मिली।
0: सर, आपके व्यक्तित्व निर्माण में मैं जानना चाहूँगी कि आपके परिवार की क्या भूमिका रही?
1: इसमें देखिए कि निश्चित तौर पर जिस परिवार और समाज में आप रहते हैं वहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं। तो मेरी माता जी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा, वो हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड करती थी, हमेशा मोटिवेट करती थी कि पढ़ाई करके ही कुछ हासिल कर पाएंगे। और जब हम लोग 10th या 12th के दौरान में थे या उसके पहले भी, तो उनका भी एक सेक्रीफाइस जैसा हर पेरेंट्स का होता है कि जब सुबह 4 बजे या 5 बजे हम लोग पढ़ने के लिए उठते थे, उस समय मॉर्निंग में, आजकल तो बच्चे लेट नाइट तक पढ़ते हैं, उस समय मॉर्निंग में पढ़ने का कल्चर था। तो मैंने देखा कि माताजी भी मेरी साथ में उठ जाती थी और साथ में उठ करके जो है थोड़ा सा बातें करना या लगातार कुछ अपने काम करते रहना, और हम लोग उस दौरान पढ़ते थे। इसके पीछे उनका प्रयोजन ये होता था कि अगर पेरेंट्स भी साथ में जागें तो बच्चे फिर मतलब थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं और जो है दोबारा उनको नींद फिर ना आए। तो माता जी का योगदान रहा। फादर की जो डेथ है वो काफ़ी पहले हो गई थी, उनका स्वर्गवास उस समय हो गया था जब मैं 7वीं क्लास में था।
0: अच्छा।
1: तो फादर के ना रहने से निश्चित तौर पर दिक्कतें हुई, और उनका जो एक सपोर्ट होता है और एक जो एक फादर का एक जो गाइडेंस होता है उसका अभाव जरूर रहा, बट ये है कि परिवार में अन्य जो भाई बहन थे उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने किया, और फैमिली का और सोसाइटी का बहुत योगदान है, और उन्होंने हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड किया, और जिस कारण से हम लोगों ने मेहनत करके और पढ़ाई अच्छे से की।
0: बचपन से ही हम एक सपना देखने लगते हैं कि बड़े होकर हम अमुक स्थान पर जाएंगे, या लक्ष्य का निर्धारण भी हम तकरीबन कर ही लेते हैं। तो आपका क्या बचपन से ही यही लक्ष्य था, आप पुलिस सेवा में ही जाना चाहते थे, या सपना पीछे रह गया और आप इस ओर आ गए?
1: इसमें देखिए कि अप टू 12th जो है 10+2 तक तो मैथमेटिक्स से मैंने पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग करने का एक जो है ड्रीम था इंजीनियरिंग करने का, बट समहाउ उसमें मैं असफल रहा। तो ये एक श्रोताओं को बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि 12वीं तक पढ़ाई आपने की और बट इंजीनियरिंग एग्जाम में मेरा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या बहुत ही छोटा हो, वहाँ पर भी एडमिशन नहीं हुआ। तो ये एक मुझे झटके की तरह था, एक शॉक की तरह था कि आप इंजीनियरिंग बनने का सोच रहे हैं, मैथमेटिक्स से 12th कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है। बट उसके बाद जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया तो उसमें मैं पढ़ने के लिए गया, तो मैंने अपनी लाइन को चेंज किया। अप टू 12th तक मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन मैंने ह्यूमैनिटीज में किया, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री वगैरह में। तो जब मैंने वो पढ़ाई की तो मैंने जाना कि मुझे अंदर से अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिलॉसफी। तो ये बेसिकली है कि दो चीज़ें इसमें जरूर सीखने की हैं कि पहला तो असफलताओं से घबराना नहीं है। आजकल है बच्चे 12th के बाद इंजीनियरिंग में नहीं हुआ या मेडिकल में नहीं हुआ तो परेशान हो जाते हैं। इसमें देखिए कि वो ज़िंदगी का अंत नहीं है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपको बाद में ओपन होंगे, और आप पहले जानिए कि आपका क्या जो है फर्स्ट लव है, आपको क्या पसंद है। तो ये मुझे 12th के बाद लगा कि ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसमें मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करूँगा। और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अच्छा किया और फिर बाद में और जगहों पर भी। तो और ऐसा नहीं था कि हम लोगों का कोई पुलिस में आने का ड्रीम था,
0: जी
1: बट ये जब ग्रेजुएशन हम लोग करने लगे, जब ग्रेजुएशन मैंने किया तो निश्चित तौर पर जो है सिविल सर्विसेज एक उद्देश्य बना कि सिविल सर्विसेज को निकालना है, और सिविल सर्विसेज में कोई भी सर्विस हो सकती है। फिर जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो उसमें इंडियन पुलिस सर्विस मुझे मिली 2007 में। तो उसके बाद में हम लोगों ने अच्छे से उसका काम किया और मन लगा करके काम किया।
0: सर, छात्र जीवन का कुछ ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा जो आज भी आपको प्रेरणा देती होगी?
1: छात्र जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं जो रहे हैं पॉजिटिव, और जो है बहुत सारे इंस्पिरेशंस हुए, फेल्यूर्स भी मिली हैं, तो हर तरीके का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान वहाँ जो कल्चर है, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ने का, डिबेट डिस्कशन का जो कल्चर है, तो वो चीज़ें जो है इंस्पायर करती हैं। और बहुत ही सस्ता एक शहर है इलाहाबाद, ऐसा शहर है जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार रहे, महादेवी वर्मा जी, निराला जी, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, तो वो इंस्पिरेशन एक रहती थी। और बुक्स पढ़ने का मुझे शौक था, तो वहाँ पर संसाधन कम थे, कम पे बुक हम लोग खरीद पाते थे, लेकिन हॉस्टल्स में रहने में एक दूसरे की बुक को शेयर करने की भी चीज़ें रहती थी, तो उस तरीके का एक पढ़ने लिखने का कल्चर था। उसके बाद जब हम लोग JNU में मैं गया, तो वहाँ पर भी डिबेट डिस्कशन का एक कल्चर था। और ये सारी चीज़ें हैं जो एक मतलब कंबाइंड स्टडी है, वो हमेशा आपको इंस्पायर करती है। और जब आपके अच्छे नंबर्स आते हैं या कुछ अच्छा परफॉर्म आप करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको तारीफ़ मिलती है, तो आप उससे भी इंस्पायर्ड होते हैं। तो बहुत सारी यादें हैं स्टूडेंट लाइफ की, दोनों यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई,
0: जी,
1: जो आज भी जो है अच्छी लगती हैं उनको याद करने पर।
0: जब हम संघर्षरत होते हैं, यानी कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो हम अपने संघर्षशील जीवन से भी काफी मजबूती पाते हैं। तो ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ हो?
1: जी, इसमें जो है जैसा मैंने बताया कि 12th में जो एक फेलियर मिली, जब इंजीनियरिंग में आप नहीं जा पाए, उसी तरीके से जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्ज़ाम्स दिए, तो शुरू में एक दो एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ सिलेक्शन, जब नहीं हुआ तो उसके बाद में आपको ख़राब लगता है, और जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और नहीं हो रहा उसके बाद में, तो वो चीज़ें आपको निराश कहीं ना कहीं करती हैं। और उसके बाद एक जॉब जो मुझे मिली पहले, वो भी मैंने ज्वाइन की, वो मेरे लिए ड्रीम जॉब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको किया। तो वो एक स्ट्रगल है जो कंपटीशन के समय में आपके साथ आता ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे UPSC के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स भी पास किया, मेंस भी पास किया, और इंटरव्यू तक भी मैं पहुंचा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने,
0: जी
1: लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो एक बहुत लो मोमेंट था लाइफ में, कि आप बहुत आगे जाने के बाद जब आप वापस जाते हैं, लेकिन उस समय भी आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, फिर उसके बाद अगेन पढ़ाई शुरू करते हैं, तो एक टाइम आता है और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। तो ऐसे मोमेंट्स आए हैं लाइफ में,
0: जी
1: बट उस दौरान आपका अपना जो विल पावर है, आपका जो आस्था है, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल पावर के लिए रहे, किसी भी चीज़ों के लिए रहे, और फैमिली का सपोर्ट,
0: जी
1: वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें आप अच्छे से करते जाइए, तो निश्चित तौर पर फाइनली सक्सेस मिलती ही है।
0: सर, आज आप HDFIG के रूप में कार्यरत हैं और इस ओर आने का अनुभव भी आपका बहुत ही अच्छा रहा, और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि इस पद पर रहते हुए आप कैसा अनुभव कर रहे हैं?
1: इसमें देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में झारखंड काडर मिला, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस काडर बेस्ड होती है, जिस राज्य को आपको आवंटित किया जाता है वहाँ आप अधिकांश हिस्सा नौकरी का अपना करते हैं। तो झारखंड राज्य में आने के बाद मैं, चूँकि यहाँ जो खूबसूरत हमारा जो राज्य है, प्रकृति से पूरी तरीके से हरा भरा और जंगल पहाड़ झरनों से भरा हुआ, और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला विभिन्न पद में। और ख़ास तौर पर जब हम लोग यहाँ ज्वाइन किए, तो 2007 बैच है मेरा, 2008 में हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में और झारखंड में आए, तो उस समय नक्सल समस्या अपने पीक पर थी।
0: जी
1: 2008 में बहुत ज़्यादा उग्रवाद की समस्या थी, और उस समस्या में ऐसी जगहों पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग्स हुई। शुरुआत में जो पोस्टिंग्स हुई हैं, चाहे वो घाटशिला में मैंने काम किया, SDPO घाटशिला में, उस समय लालगढ़ आंदोलन बंगाल में चल रहा था, तो जमशेदपुर का जो ग्रामीण इलाका है घाटशिला और

0: बूढ़ा बंदा चाकुलिया, वो सब बंगाल में मिदनापुर और झाड़ग्राम के बॉर्डर में है, तो काफ़ी बड़ी समस्या वहाँ पर थी, बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती थी। तो उनसे भी आपको खुद ही सीखना है, क्योंकि आप एक अजीब सी बात होती है कि आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और स्टूडेंट लाइफ के बाद एक ट्रेनिंग करके आप आ जाते हैं और उसके बाद ये चैलेंजेस को आपको अपनी ही ट्रेनिंग से आपको सीखना होता है। तो उस नक्सल समस्या ने बहुत हम लोगों को सिखाया, बहुत मेहनत की विभिन्न जिलों में रहते हुए, तो उसने काफ़ी लर्निंग दी और ये आपको एक दिखाया कि किस तरीके से घनघोर गरीबी का लोग सामना कर रहे हैं, इसके अलावा नक्सल समस्या का भी सामना कर रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि आप उस समस्या के समाधान में एक हिस्से के रूप में आप रहे, और जो भी आपको करने का मौका दिया वो इस नौकरी नहीं दिया, और उसके बाद एसटीएफ में अभी रहते हुए भी हम लोग लगातार हैं और एसटीएफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है झारखंड राज्य से नक्सल समस्या को ख़त्म करने में। जो एसटीएफ है झारखंड की स्पेशल टास्क फोर्स, झारखंड जगुआर जिसका नाम है, ये एक स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स है झारखंड राज्य की। तो इस फोर्स ने 2008 में अपने गठन के बाद अभी तक झारखंड राज्य में नक्सल उन्मूलन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और हम लोग भी उसी माध्यम से जो भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट स्टेट के लिए वो कर रहे हैं।
1: इन जिम्मेवारियों को निभाते हुए कुछ जो आपको पल मिलते हैं रिलैक्स करने के लिए, उन राहत के पलों पर आप क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं?
0: मुझे बुक्स बहुत पढ़ना पसंद है शुरू से ही जी। और बुक्स मैं बहुत रेगुलर रीडर हूँ, जब बहुत बिजी रहता हूँ तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि बुक्स पढ़ूँ। मेरी अपनी खुद की लाइब्रेरी भी है घर में जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा बुक्स हैं, तो बुक पढ़ने का मुझे शौक़ है, वो मैं करता हूँ। इसके अलावा जो मूवीज़ देखने का भी शौक़ है, मूवीज़ और इन सब का जो है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनने का, खासतौर पर जो लाइट क्लासिकल म्यूज़िक है, गज़ल कवाली वगैरह, तो उसको मुझे एक्चुअली उर्दू भी मैंने पढ़ी है अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो मुझे जो है जो बड़े जो फ़नकार हैं उर्दू शायरी के, शायरों को पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे इसके अलावा जो गज़ल गायक हैं, चाहे वो मेहंदी हसन साहब हों, गुलाम अली साहब हों, जगजीत सिंह या नुसरत फ़तेह अली साहब की जो कवालियाँ हैं, तो उनको सुनने का और जो है क्या नाम है उनका, और शायरी वगैरह को भी पढ़ने का शौक़ है, तो वो करते हैं। दूसरा स्पोर्ट्स और योगा
1: जी।
0: तो ये जो है मैं जरूर श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक मेरा भी एक कटु अनुभव रहा है जीवन में, स्टूडेंट लाइफ के दौरान बहुत अवेयर हम लोग नहीं थे स्वास्थ्य के प्रति, तो खराब हेल्थ के कुछ इश्यूज आए जब पढ़ने के दौरान हम लोगों को, तो उसने कहीं ना कहीं करियर में भी स्टूडेंट लाइफ में प्रभावित किया। हो सकता है कि जो सफलता आपको पहले मिलती वो बाद में मिली, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से ही योगा प्राणायाम इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर बच्चे करें तो, या आउटडोर एक्टिविटीज़, वो बहुत ही ज़रूरी है आपके पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए और बाद में भी। तो मैं योगा करता हूँ और योगासन मुझे अच्छा लगता है, प्राणायाम मुझे अच्छा लगता है, और इससे बहुत फ़ायदा है, और ये बहुत एक लाइफ एक बैलेंस है एक्चुअली। प्रोफेशनल लाइफ में सफल होना जितना ज़रूरी है उतना ही हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। एक अनहेल्दी व्यक्ति अगर आप रहेंगे तो आप ना एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे ना एक अच्छी नौकरी कर पाएंगे, तो इसलिए एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है, और शारीरिक और मानसिक तौर से अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने कार्य को भी सफलतापूर्वक निभा पाएंगे। सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब योगा और प्राणायाम आप कर रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आपने अभी अभी बताया कि गीत संगीत का भी शौक आपको है, तो मैं चाहूँगी कि आपकी पसंद का एक गीत हम यहाँ सुने, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: मैं मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में, गज़ल है अहमद फराज साहब की लिखी हुई, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, वो गज़ल मुझे बहुत पसंद है, उसको सुना जा सकता है।
1: जी ज़रूर, तो आपकी पसंद का ये गीत हम यहाँ सुनते हैं।

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारी बातें हो रही हैं STFIG श्री अनूप बिरथरे सर से। सर, गीत संगीत की बात हो गई और आपने अपने बारे में भी बहुत सारी बातें आपने बताई। मैं अब आपसे चलते चलते ये जानना चाहूँगी कि अब आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और उनका आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या योगदान है और क्या किस तरह से वो आपको सामंजस्य बिठाकर काम के प्रति और परिवार के प्रति आगे बढ़ रहे हैं।
1: देखिए, फैमिली में तो मेरे फादर की का स्वर्गवास तभी हो गया था जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। फिर माताजी का भी कुछ सालों पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। तो एक भाई है मेरे और दो सिस्टर्स हैं, वो अपना जो काम है बिजनेस वगैरह वो करते हैं। इसके अलावा फैमिली में जो है न्यूक्लियर फैमिली है मेरी। अभी यहाँ पर जो है मेरी वाइफ हैं वो बहुत अच्छी पेंटर हैं और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट भी हैं वो। उन्होंने जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह के कोर्स किए हुए हैं, तो शी उन्होंने काफ़ी एक्सपर्टीज़ उसमें हासिल कर रखी है। तो वो अपना प्रोफेशनल काम करती हैं। इसके अलावा दो बेटे हैं मेरे, तो बड़ा वाला बेटा भी जस्ट 12th पास किया है और अब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आगे बढ़ेगा। और जो छोटा वाला बेटा है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो 9th क्लास में है और दोनों ही रांची में पढ़ते हैं। और फैमिली का देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता ही है आपके किसी भी तरह की सफलता के लिए। फैमिली तो बैकबोन है और ऐसे प्रॉब्लम्स के क्षण आपको आते ही हैं व्यक्तिगत लाइफ में भी प्रोफेशनल में भी, जिसमें फैमिली एक सपोर्ट के रूप में। तो मेरा मानना है दो ही चीज़ें हैं जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, पहला आपकी हेल्थ और दूसरा फैमिली सपोर्ट। तो आजकल इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में आपने देखे होंगे बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं या बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, लेकिन फैमिली लाइफ उनकी बहुत अच्छी नहीं है
0: जी।
1: तो उसके कारण से जो है बहुत से डिप्रेशन के केसेस आते हैं, बहुत सी मेंटल उस तरह के प्रॉब्लम्स के आते हैं, डिस्टर्ब्ड फैमिलीज आपने देखी होंगी। तो लाइफ जो है ना वो मेरा मानना है कि स्प्रिंट नहीं है, मतलब तेज दौड़ नहीं है, वो एक मैराथन है। लंबे समय तक एक बैलेंस के साथ में चीज़ों को करने का नाम ही जिंदगी है। और बहुत सारी फेल्योर्स, ज़्यादा मैंने बताया कि 12th के बाद में भी फेल्योर और हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फेल्योर मिली है लाइफ में, लेकिन उसके बाद उससे उठ करके जब आप खड़े होते हैं तभी बेहतर है। और ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक बेहतर इंसान बने, काम आप कुछ भी कर सकते हैं, और एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वैल्यूज़ को लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है।
0: सर, अंत में चलते चलते मैं उन युवाओं के लिए आपके द्वारा एक संदेश चाहूँगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहते हैं और अभी उसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे?
1: जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आज भी बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्निकल सर्विसेज में और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। उसके बाद भी सिविल सर्विसेज आज भी एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। इसमें पढ़ने के लिए आपको कठिन मेहनत की ज़रूरत है निश्चित तौर पर, लेकिन आपको लाइफ में चैलेंजेस बहुत देगी ये नौकरी और बहुत जो है सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा। तो पढ़ाई कंटिन्यू जो लोग कर रहे हैं वो अपना करेंगे ही। इसके अलावा इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना ज़रूरी है, और हमेशा आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, मतलब अपने आसपास होने वाली चीज़ों को लेकर के, जनरल नॉलेज के लिए, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, मतलब हर तरीके की चीज़ों को पढ़ते रहें। और ग्रेजुएशन टाइम से ही इसकी तैयारी करें, ग्रेजुएशन के टाइम से ही बेसिकली ये सारी चीज़ों को, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने होते हैं, तो वो आप एक दो साल में नहीं कर सकते हैं। तो आप शुरू से ही उसको टारगेट करके पढ़ें और अच्छे से अपना चीज़ों को करते जाएं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी।
0: सर, आपने बहुमूल्य वक्त निकाला, अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को हमारे साथ साझा किया और साथ ही साथ अपने सुंदर विचारों को भी हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जी, थैंक यू, शुक्रिया।
0: श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे IGSTF अनूप विरथरे से सिंधु मिश्रा की बातचीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी पूजा, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म थानेदार के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल की, संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने और शब्द रचना इंदिवर का। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां और बुलंद शहर से बदरू अली अंसारी, फरजू अली अंसारी ने। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। तो कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म गुरु से, आवाज श्रेया घोषाल की, संगीत से सजाए एआर रहमान ने, शब्द रचना गुलजार का। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने। आप हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदाभ्य कौर, और छत्तीसगढ़ भाटापरा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। तो लीजिए सुनिए इन्हीं की फरमाइश का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म हेलो ब्रदर से। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत से सजा हिमेश रेशमिया ने और शब्द रचना सुधाकर शर्मा की। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गोला बाजार बक्सर से बीना देवी, सविता देवी, पूनम आर्या, एसएन आर्या, रोशनी, अमृता, सुरभि और खुशबू ने। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की फरमाइश का ये गीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चर्चा औषधीय पौधे गुणों का खान, भेंट वार्ता आप सुनेंगे स्वास्थ्य गर्भावस्था के लिए पोषक आहार, जानकारी सुनेंगे पर्यटन से बच्चों को लाभ, सूत्रधार होंगी सुभाषिनी और सुमन तिवारी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 1 बजे होगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 से आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुरंजनी, उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

1:45 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, और 2:30 का समय होगा कार्यक्रम जय भारती का। 2:55 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 3 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: बहनों नमस्कार। 12 बज चुके हैं और ये घड़ी है आपसे मुलाकात की। और हमारे साथ है हमारी सखी सुमन और मैं हूँ सुभाषिनी। सुमन तुम्हें भी नमस्कार।
1: नमस्कार बहनों। और सुभाषिनी, हमें सखियों से बहुत सारी बातें करनी है, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का, है ना। और हम अपना मनपसंद कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज के हम सफर हम और सुभाषिनी साथ साथ हैं। और देखो कि आशा है कि सभी बहनें जो हैं हमारी वो परिवार के संग स्वस्थ होंगी और सकुशल होंगी।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो बहनें, हमारे स्वस्थ तभी तो हम अक्सर कुछ सुझाव, कुछ जानकारियां साझा करते रहते हैं। और आज भी हम उनके लिए कुछ ऐसी ही जानकारी साझा करेंगे।
0: हाँ,
1: है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। बहनें हमारी स्वस्थ रहूंगी तो हमारी बातें भी उन्हें बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो फिर देर किस बात की, चलो बहनों से साझा करते हैं आज की जानकारी।
1: बिल्कुल।
0: और सखियों, जो हमारी प्रकृति है उसका रूप बड़ा ही निराला है। हर समस्या का समाधान हमारी प्रकृति में ही छिपा है और हमारी सेहत का राज भी प्रकृति में ही है। बस जरूरत है हमें इसे पहचानने की।
1: बिल्कुल सही कहा सुभाषिनी तुमने। और देखो, जब हमारा जो देश है, एक ऐसी पावन भूमि है यहाँ कि जहाँ की प्रकृति को भगवान माना गया है। और हमारे जो पूर्वज हैं वो तो बहुत पहले ही समझ लिए हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सिर्फ ऑक्सीजन और फल फूल ही नहीं देते बल्कि बीमारियों से लड़ने वाले औषधीय गुणों का भी भंडार है इनमें, है ना।
0: सही कह रही हो। और हाँ सखियो, आज जब हम छोटी सी बीमारी के लिए अंग्रेजी दवाओं और रसायनों की तरफ भागते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि असली सेहत की जो चाबी है वो हमारे अपने आंगन और हमारे अपने बगीचे में छिपी है। और उन्हीं में से एक है तुलसी, जो भारत के प्रायः हर घर में पाई जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सुभाषिनी। देखो, तुलसी के जो पौधे हैं ना, वो तो धार्मिक हैं ही, उनकी पूजा की ही जाती है, पर ये साथ ही साथ औषधीय महत्व भी है इनका। इसके पत्तों का जो उपयोग है वो सर्दी, जुकाम, खांसी, जैसे लीवर की बीमारी हो या मलेरिया या फिर दंत रोग हो और श्वास संबंधी बीमारी की भी रोकथाम में इसका के इलाज के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। और भारतीय संस्कृति में तुलसी को घर के आंगन में स्थापित करके पूजा भी की जाती है, जैसा कि मैंने कहा। और इसका जो वैज्ञानिक महत्व है कि हम रोज तुलसी की पत्तियां प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जो हमें गंभीर बीमारियों से भी दूर रखता है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कह रही हो। और जो हमारे जो देश में इस तरह के बहुत सारे औषधि हैं, जैसे कि उन्हीं में से एक है बेल का पौधा, जो कि पूरे विश्व में ये भी जो पेड़ है बेल के पाए जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा में इनकी पत्तियां हो गए, इनके छाल हो गए, इनके जड़ हो गए, और फल का तो उपयोग होता ही है, बीजों का भी उपयोग होता है। और गर्मियों में बेल का शरबत तो बहुत ही फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा सुभाषिनी। और देखो, इसी में एक और भी पौधा है औषधीय के रूप में, कि वो है एलोवेरा, जो कि एक छोटा सा पौधा होता है। इसे हर घर में भी गमले में हम लगा सकते हैं और जो कि दुनिया भर में पाया जाता है। और यह त्वचा के दाग धब्बे हो या पिंपल्स हो या फिर और भी पिंपल्स जैसी कोई भी समस्या हो, उसको निजात पाने के लिए उससे ये काफी मदद करता है। और इसका उपयोग जो है सोरायसिस, चाहे डैंड्रफ या मामूली जलन भी ये हो, तो उस पर भी काफी काम करता है। और त्वचा पर अगर कहीं खरोच लग जाए तो इन सब में भी इसका प्रयोग हम करते हैं, है ना। और बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं, है ना। इसकी जेल निकाल के और उसे पीस के लगाने से बाल भी काफी चमकदार होते हैं हमारे।
0: और उसी तरह अश्वगंधा का उपयोग आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए किया जाता है। और वहीं गिलोई, जिसे कि अमृता भी कहा जाता है, ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे गंभीर वायरल बुखार से लड़ने में शरीर की मदद करता है। और ब्राह्मी भी एक तरह का पौधा है, औषधीय पौधा है, जो मस्तिष्क के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। ये याददाश्त तेज करने, मानसिक शांति के लिए और एकाग्रता बढ़ाने में बहुत सहायक होता है।
1: बिल्कुल सही, छोटे बच्चों को इसका प्रयोग करा सकते हैं हम अपने उनके

0: याददाश्त के लिए। और देखो कि हमारे रसोई में मिलने वाली जो औषधीय पौधे से प्राप्त, एक है हल्दी है, अदरक है, लौंग, तेज पत्ता, इन सब का भी बहुत महत्व है। गिलोय भी औषधीय गुणों से भरपूर है, इससे बुखार उतर जाता है और साथ ही जो इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की में भी ये काफी सहायक है।
1: बिल्कुल।
0: इसकी जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना?
1: और कोरोना में भी इसका बहुत उपयोग देखा गया था।
0: बिल्कुल, लोग सुबह सुबह खाली
1: हाँ
0: पेट इनको पानी में उबाल के साथ में दालचीनी डाल के साथ
1: बिल्कुल,
0: और एक गिलास गर्म पानी की जैसे
1: हाँ
0: पीने से काफी ये फायदेमंद रहता था,
1: फायदेमंद
0: है ना
1: होता था।
0: सुहासिनी?
1: इसी तरह आंवला, जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, पेट की बीमारियों, आंखों के विकार, इस तरह की कई बीमारियों में आंवला एक रामबाण है। झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाला चिरैता मलेरिया, पीलिया और रक्त को साफ करने में सहायक होता है।
0: बिल्कुल सही। तो कई से जो झारखंड हमारी धरती है, झारखंड की, वहाँ औषधीय पौधे मिलते हैं, बिल्कुल भरी पड़ी है हमारे हर जगह प्रकृति के बीच
1: सही।
0: में। और यहाँ मिलने वाले जो भी साग सब्जी हैं, फल फूल हैं, इन सब का उपयोग यहाँ के लोग खाने में करते हैं।
1: हाँ
0: जैसे कि देखो कोयनार का साग,
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: कि गर्मियों के दिन में मिलता है और बरसात के मौसम में भी मिलता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखने में मददगार करता है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमें शाक के रूप में इसका फल और जो फूल होते हैं ना, इसके कोयनार का फूल, इसे भी बना के
1: हाँ
0: खाया
1: खाया
0: जाता है।
1: जाता
0: हमारे
1: है।
0: झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: सही। और इसी तरह चाकुर साग है, जो कि पेट की बीमारियों में, मुनगा जिसे कि हम लोग सहजन
0: सहजन,
1: कहते
0: बिल्कुल।
1: हैं, ये एकदम कैल्शियम, आयरन और विटामिन के लिए भरपूर होता है इससे, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी है। और इसके अलावा भुई आंवला हो गया, कटकरी हो गया, पिपली हो गया, इस तरह के बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जो झारखंड में पाए जाते हैं और ये गुणों की खान है।
0: बिल्कुल सही कहा। देखो कि हमारे जो शरीर है ना, उसे निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का बहुत बड़ा योगदान है ना? और हमारी बहनें भी निश्चित अपने घर परिवार में अपने बच्चों के लिए इस तरह की चीजों का प्रयोग करती होंगी। अगर जब घर में कोई छोटी मोटी बीमारी हो, तो हर समय एलोपैथ का प्रयोग नहीं करके
1: बिल्कुल।
0: औषधीय पौधों की ओर बढ़ती होंगी। जैसे कभी खांसी हो गई या जुकाम है बच्चों को, तो जरूर वो इनका प्रयोग करती होंगी। और आज हम विज्ञान और आधुनिकता के युग में तो जी ही रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के असली रहस्य जो है, इन औषधीय पौधों के गुणों में ही छुपा हुआ है। और प्रकृति ने हमें इलाज का इतना सुंदर और सरल साधन दिया है, बस हमें जरूरत है श्वासनी, तो इसके सही ज्ञान और इसके सही तरीके से उपयोग के लिए,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: सही।
0: यदि हम इनका सही उपयोग करें, तो छोटी मोटी बीमारियों को घर में ही इन्हें
1: हाँ,
0: क्योर
1: दूर
0: कर
1: दूर
0: सकते
1: कर
0: हैं, है
1: सकते
0: ना?
1: हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। और बातें तो हमारे पास अभी बहुत सारी ही, बहुत सारी बातें हमने की भी,
0: जी
1: लेकिन बहनों को इंतजार रहता है ना कि हम उनके लिए कुछ मनोरंजन के लिए जो हम गीत
0: साधन भी
1: लेकर के
0: लेकर
1: आते
0: आए हैं।
1: हैं,
0: जी
1: तो चलो बहनों के साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सुमन,
1: अभी हम लोग सुन रहे थे एक नाक ये गीत, और ये फिल्म थी अनोखी रात, है ना। बोल थे ताल मिले नदी के जल में,
0: बिल्कुल बहुत ही सुंदर गीत है ना सुमन।
1: बिल्कुल, और इनके जो स्वर थे वो थे मुकेश के, है ना, और गीत थे इंदिवर के और संगीत रोशन के। तो बहुत प्यारा सा गीत था,
0: बिल्कुल, और बिल्कुल लग रहा था कि बरसात का ही गीत है।
1: जिस
0: तरह से बरसात का पानी गिरता है और नदी में, नदी से ताल फिर समुद्र में जाके मिलता है, तो बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: बिल्कुल,
0: और अब वक्त है आज के हमारे मेहमान से बहनों को परिचय करा दें। आज की हमारी मेहमान है सुचित्रा सिंह। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य गर्भावस्था के लिए पोषक आहार। इनसे बातचीत कर रही हैं बहनों हमारी रेडियो सखी सुमन। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
2: महिलाओं के जीवन में गर्भावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसी समय एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तब उसके शरीर के अंदर एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, विकसित होता है। इस समय माँ और बच्चे दोनों को अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान सही भोजन करना बहुत जरूरी है। स्वस्थ गर्भावस्था का मतलब है कि माँ पूरी तरह से स्वस्थ रहे और बच्चा भी अच्छी तरह से बढ़े। यदि गर्भवती महिला अच्छा और पौष्टिक भोजन खाती है, समय पर आराम करती है, साफ सफाई का ध्यान रखती है, तो एक सुरक्षित गर्भावस्था रहता है और बच्चे का विकास भी सही तरीके से होता है। पोषक आहार माँ और बच्चे दोनों के लिए भी जरूरी है। अच्छा भोजन माँ को ताकत देता है। तो आइए आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुचित्रा जी, जो एक आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। सुचित्रा जी नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: स्वास्थ्य गर्भावस्था क्या होती है? माँ के लिए पोषक आहार आवश्यक है ये भी कहा जाता है, इस विषय पे आप क्या बताना चाहेंगी?
3: स्वस्थ गर्भावस्था वो होती है जिसमें कि माँ और जो बच्चा होता है वो दोनों के दोनों ही स्वस्थ रहें, माँ को कोई भी जो गंभीर बीमारी होती है वो ना हो, और उसे समय पर अच्छा भोजन मिले, डॉक्टर की सलाह मिलती रहे, और बच्चे का विकास भी एकदम भी सही तरीके से होए। और स्वस्थ गर्भावस्था में माँ का जो शरीर मजबूत रहता है और उसका खून सही मात्रा में रहता है, उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है, बच्चा भी सही समय पर बढ़ता है और विकसित होता है। यदि गर्भवती महिला जो होती है वे समय पर जांच करवाती है, पौष्टिक भोजन खाती है, ताप पानी पीती है, अच्छी स्लीप शेड्यूल रखती है, अच्छी नींद

0: है और हल्का व्यायाम करती है या योगा करती है तो गर्भावस्था ये सुरक्षित रहती है। और स्वस्थ गर्भावस्था का जो मतलब होता है वो केवल बीमारी मतलब बीमार ना होना नहीं होता है, इसका मतलब है कि माँ का जो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। जब माँ खुश रहती है तो उसका असर बच्चे पे भी अच्छा पड़ता है और साथ ही साथ इस पीरियड में माँ को पोषक आहार लेना चाहिए। पोषक आहार जो कि वो भोजन होते हैं जिसमें कि शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, एक ऐसा भोजन जो शरीर को ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और शरीर के सभी अंगों को सही तरह से काम करने में मदद करता है। पोषक आहार ऐसे तो कई प्रकार के भोजन शामिल होते हैं, जैसे कि दाल हो गया, दूध, दही, रोटी, चावल, फल, हरी सब्जियां, अंकुरित चना, सूखे मेवे, और हर व्यक्ति को अपनी उम्र और जरूरत के अनुसार जो पोषक भोजन होता है वो खाना चाहिए। गर्भवती महिला को सामान्य व्यक्ति से अधिक पोषण की जरूरत होती है क्योंकि उसके शरीर के साथ साथ बच्चे का शरीर भी बन रहा होता है।
1: गर्भावस्था में होने वाले जो शारीरिक बदलाव होते हैं वो क्या है, और गर्भवती महिला को अधिक पोषण की जरूरत क्यों होती है?
0: गर्भावस्था का जो समय होता है उस समय महिला के जो शरीर होता है उसमें काफी सारे बदलाव आते हैं और ये बदलाव जो है वो सामान्य होते हैं। सबसे पहले जो उसका जो शरीर होता है उसमें काफी सारे हॉर्मोन्स बदलते हैं जैसे कि हॉर्मोनल चेंजेस कहा जाता है और इसी कारण उसे उल्टी या फिर थकान महसूस हो सकती है। और कुछ महिलाओं को कमर दर्द या फिर पैरों में दर्द या सूजन भी हो सकती है। यदि ये बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गर्भावस्था में भूख भी पहले से ज्यादा लग सकती है या भूख पे भी मतलब अफेक्ट आ सकता है और इसलिए समय समय पर थोड़ा थोड़ा और पौष्टिक भोजन खाना अच्छा माना जाता है। और तो और गर्भवती महिला जो होती है वो केवल अपने लिए भोजन नहीं करती है, उसका जो भोजन होता है वो उसके लिए और उसके बच्चे जो होता है उसके लिए भी पोषक होता है और बच्चे के शरीर का निर्माण माँ के अंदर ही मिलने वाले जो पोषक तत्व है उससे ही होता है। इसलिए यदि माँ जो है वो अच्छा खाना खाएगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। माँ का शरीर को ही जो अधिक ऊर्जा होती है उसकी जरूरत होती है, उसे जो बच्चा होता है उसका वजन संभालना पड़ता है, इसलिए उसे सामान्य दिनों से अधिक मतलब जो होता है पोषण वो मिलना चाहिए। गर्भावस्था में जो है वो खून की मात्रा भी बढ़ती है इसलिए शरीर को आयरन या फिर जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं वे सब की भी काफी जरूरत पड़ती है। और तो और यदि माँ पर्याप्त भोजन नहीं करेगी तो उसे कमजोरी, चक्कर या फिर खून की कमी जैसी समस्याएं जो होती है वे सब भी देखनी पड़ सकती है।
1: स्वास्थ्य गर्भावस्था के लिए पोषक आहार जरूरी है। गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और भोजन से जुड़ी हुई जो अच्छी आदतें होती है वो क्या हैं?
0: जो गर्भावस्था का जो समय होता है उस समय महिला को हर दिन ऐसा भोजन मतलब जो है वो लेना चाहिए जिससे उसे और उसके बच्चे को पूरा पोषक मिल सके। और इस समय केवल पेट भरना ही जरूरी नहीं होता है बल्कि ऐसा भोजन करना जरूरी होता है जो कि शरीर को ताकत दे, खून बढ़ाए, हड्डियों को मजबूत बनाए और बच्चे के विकास में मदद करे। कई लोग सोचते हैं कि जो गर्भवती महिला होती है उसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, ये एक्चुअली पूरी तरीके से सही नहीं है। उसे जरूरत के अनुसार जो होता है वो संतुलित और साथ ही साथ पौष्टिक भोजन जो होता है वो करना चाहिए। और बहुत अधिक खाना भी ये अच्छी बात नहीं होती है और बहुत कम खाना भी सही नहीं होता है। बैलेंस डाइट जो होता है वो लेना चाहिए और इस समय भोजन समय पे करना चाहिए और तो और साफ भोजन खाना चाहिए और पर्याप्त पानी भी पीना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ जो गर्भवती महिला होती है उसको हमेशा ताजा, साफ और तो और जो घर का बना हुआ भोजन होता है वही खाना चाहिए। भोजन में अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती है वो सब उन्हें शामिल करनी चाहिए ताकि शरीर को सभी जो भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो सब मिले। भोजन में रोटी हो गया, दाल, चावल, हरी सब्जी, फल, दूध।

0: दही, अंकुर, चना, अनाज, सूखा मेवा, ये सब, और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में जो पानी होता है वो इंटेक करना चाहिए या फिर उसको शामिल करना चाहिए। और हर दिन एक जैसा भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन में थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहना चाहिए ताकि शरीर को डिफरेंट डिफरेंट पोषक तत्व जो होते हैं वे मिलता रहे। और तो और जो होता है वो समय भी ना निर्धारित रखना चाहिए और समय पर भोजन जो है वो करना चाहिए, क्योंकि समय पर भोजन करने से जो शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है, और यदि गर्भवती महिला जो है वो देर तक भूखी रहे तो उसे कमजोरी, चक्कर या फिर थकान महसूस हो सकता है। इसलिए भोजन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, ये सब समय से कर लेना चाहिए। इनके बीच जो हल्का जो पौष्टिक नाश्ता होता है वो भी किया जा सकता है ऐसे तो। और सुबह का नाश्ता जो हो गया उसे ऐसे तो सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। रात भर खाली पेट रहने के बाद शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो सुबह का नाश्ता जो होता है वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नाश्ते में ऐसे तो कुछ भी खाया जा सकता है, लेकिन बहुत बार होता है कि डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए और दवाइयां भी जो होती है वो भी समय पे लेनी चाहिए।
1: सुचिता जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। गर्भावस्था में सही भोजन करना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है, और इस समय भोजन पौष्टिक, संतुलित, ताजा और साफ होना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध, दही, अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और तला भुना, बासी और बहुत अधिक मसालेदार भोजन करने से भी हमें बचना चाहिए। और समय पर भोजन करना, पर्याप्त आराम करना, साफ सफाई रखना, ये सब आवश्यक है स्वस्थ गर्भावस्था के लिए। गर्भावस्था अधिक सुरक्षित और स्वस्थ रह सकती है तथा बच्चे का विकास भी अच्छी तरह से होता है इन सब चीजों का ध्यान रखने से। सुचिता जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: बहनों, आप अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का थी सुचित्रा सिंह, विषय था स्वस्थ गर्भावस्था के लिए पोषक आहार, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी सखी सुमन। अब बहनों, अब आपसे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं।
3: से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: पुनः स्वागत है गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। तो चलिए अब हम फिर से जानकारी कर लेते हैं बहनों, पर्यटन से जो हमारे बच्चे हैं उनको घूमना फिरना, उनका ध्यान रखना, यह सब कुछ बहुत जरूरी होता है। पर्यटन बल्कि हमारे जीवन

0: में कोष समृद्ध बनाने वाला एक अनुभव भी है और मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है, नई जगहें देखना, नए लोगों से मिलना और नई चीजें सीखना उसे हमेशा से ही पसंद है ना। जब भी इंसान किसी नई चीजों को देखता है, समझता है, तो उसे खुशी मिलती है।
1: हाँ।
0: एक अलग तरह से आनंद आता है कि कितनी अच्छी चीजों को हमने देखा सुना, तो ये खुशी जो है बिल्कुल अलग होती है ना।
1: बिल्कुल सही कह रही हो सुमन। और खास करके जो बच्चे होते हैं ना, वो घूमने फिरने के नाम से ही उत्साहित हो जाते हैं, और अगर माता पिता थोड़ी सी समझदारी दिखाए ना, तो पर्यटन या घूमना फिरना बच्चों के लिए जो सिर्फ मौज मस्ती का जरिया है, इसे उनके विकास की एक खुली पाठशाला बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सुभाषनी। जब बच्चे इतिहास की किताबों में ताजमहल देखते हैं, लाल किला के बारे में पढ़ते हैं, तो वह केवल रटते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन जब उन्हें पास से वो देखेंगे ना, तो एक अलग तरह का सुकून मिलेगा कि अच्छा इन्हीं चीजों के बारे में मैंने
1: हाँ
0: पढ़ा
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: ये ऐसा उन्हें लगेगा, है ना। तो लेकिन पर्यटन के दौरान जब वो खुद एक एक चीजों को छूते भी हैं, पत्थरों को देखेंगे,
1: हाँ
0: उन्हें देखेंगे नजदीक से, और जो उनके साथ पेरेंट्स हैं वो घूमते फिरते उन्हें बताएंगे कि देखो इन
1: बताएंगे।
0: चीजों के विषय में तुमने पढ़ा है, ये देखा है, ये हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये उनके दिल दिमाग में छा जाता है और उन्हें
1: बिल्कुल
0: किसी भी चीजों को समझना बहुत आसान लगने लगता है। और जब कोई भी चीज जीवंत इंसान देखते हैं ना, तो उनको सहेजना, उन्हें याद करना, उन्हें अपने मस्तिष्क पे बैठाना सब आसान लगने
1: आसान
0: लगता
1: हो
0: है ना।
1: जाता है बिल्कुल। और उनका मानसिक और बौद्धिक विकास तो होता ही है, और नई जगहों, भाषाओं और लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, जिससे उनका संकोच दूर होता है, क्योंकि बच्चे बहुत संकोची होते हैं ना, जल्दी घुलते मिलते नहीं। बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं तो नई नई जगह घूमते हैं, अलग अलग संस्कृतियों और रहन सहन को देखकर उनमें दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति की भावना भी जागृत होती है।
0: बिल्कुल। और बाहर जाने से ना सीखने का भी बच्चों को बहुत सारा मौका मिलता है। यदि मान लो कि कहीं ट्रेन लेट हो रही है, चाहे किस जगह पे किसी भी स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर कैसे ढूंढना है, क्या है, इन सब चीजों की भी शिक्षा हो, या एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो वहां की चीजों को
1: हाँ
0: देखना,
1: हाँ
0: वहां की चीजों को सुनना समझना, ये भी बचपन से बच्चे सीखने लगते हैं और समझने लगते हैं। तो जब वो बड़े होंगे ना, तो उन्हें याद रहता है कि हाँ ये चीजें ऐसे की
1: हमने
0: जाती है,
1: देखी।
0: हमने देखी है, उन कामों को ऐसे किया जाता है, वहां की टिकट काउंटर है, चाहे कुछ भी छोटी छोटी चीजें ही हैं, उन्हें सीखना, उन्हें
1: सीखते हैं
0: सहेजना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल।
0: और देखो कि आजकल तो बच्चे प्रकृति से भी दूर हो रहे हैं, तो पर्यटन के माध्यम से उन्हें प्रकृति के सानिध्य का मौका मिलता है, और पहाड़ों, जंगलों, समुद्र तटों पर जाने से, ट्रैकिंग और अन्य आउटडोर एक्टिविटी से उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ना
1: बिल्कुल
0: सुभाषिनी।
1: बिल्कुल। और पर्यटन के दौरान यात्रा में आने वाली जो परेशानियां, जैसे कि तुमने बताया सुमन कि ट्रेन लेट हो गई, मौसम बदल गया, तो इस तरह की जो चुनौतियां जो आती हैं,
0: बच्चे
1: उनका
0: सीखते
1: सामना जो
0: हैं
1: करते
0: बिल्कुल।
1: हैं, और वो धैर्य रखना भी सीखते हैं, और परिस्थितियों का कैसे सामना करना है वो भी सीखते हैं, कैसे उन उन उस
0: विपरीत
1: हाँ
0: परिस्थितियों
1: किस
0: में
1: तरह से निर्णय लेना है,
0: बिल्कुल
1: विपरीत परिस्थितियां अगर आ जाए तो हमें क्या निर्णय लेना
0: हाँ
1: है, ये
0: हाँ
1: सारी बातें बच्चे सीखते हैं।
0: बिल्कुल। तो सभी अभिभावकों को बच्चों को पर्यटन के लिए लेकर जाना चाहिए, और दूर नहीं जा सकते तो हमारे आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं, हमारे आसपास जो हैं, वहीं बहनों को अपने बच्चों को छुट्टियों में पर्यटन के लिए जरूर लेकर जाएं, है ना, क्योंकि किताबों के पन्नों से बाहर निकलकर दुनिया देखना भी बहुत जरूरी होता
1: जरूरी
0: है
1: है
0: बच्चों के
1: बिल्कुल
0: लिए।
1: बिल्कुल। और हम आशा है कि जब भी बच्चों की छुट्टियां होंगी तो हमारी बहनें जरूर
0: लेकर
1: पर्यटन के लिए
0: जाएंगे
1: लेकर जाएंगे।
0: बिल्कुल
1: और सुमन, बरसात का मौसम है और जो जल संचयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: बिल्कुल। जल है तो जीवन है कहते हैं ना हम, और तो देखो कि बरसात का मौसम है तो चारों ओर पानी ही पानी है, समय है पृथ्वी पर नए जीवन के संचार का, क्योंकि जल ही जीवन है कहते हैं। तो लेकिन क्या हम लोग ये सोचे हैं कि आने वाला समय जो है वो जल की कमी ना हो, इसके लिए बहुत ही जरूरी है ना।
1: यानी कि जल संचयन करना हमें बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि हम इस बारिश के मौसम में कहीं जल जरूर
1: हाँ, बिल्कुल
0: संचयन करेंगे और एक ये बनाएंगे।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ ही बहनों, हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अब आपके सखी सुभाषिनी
0: और सुमन को दें इजाजत।
1: इजाजत, नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म भाग जॉनी के इस प्यारे से गीत के साथ, आवाज सुनील कामात की, संगीत सजाया मिथुन ने, शब्द रचना अमिताभ वर्मा का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: करे भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म धुरंधर से, आवाजें अरिजीत सिंह और अरमान खान की। शब्द रचना इरशाद कामिल का, संगीत से सजाया है आदर्श।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज अरिजीत सिंह की, सब तृष्णा हिमेश रेशमिया का, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया और शब्बीर अहमद ने।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म रुस्तम से, आवाज़ आतिफ असलम की, संगीत से सजाया है आरको ने और शब्द रचना मनोज मुंतासिर का।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीरवन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha has resumed discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, had moved the bill in the House yesterday. Participating in the discussion, JDU MP Dileshwar Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in the Parliament, stating that it will ensure a brighter future for students while enhancing transparency in the education system. Opposing the bill, N.K. Premachandran of RSP said that the bill is inadequate to achieve the purpose stated in the bill. He alleged that the changes brought in the proposed bill are merely cosmetic. The Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. When the House reassembled at 12 noon after the first adjournment, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but opposition members started sloganeering, pressing their demands. The Lok Sabha has extended the tenure of the Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the winter session 2026 of Parliament. The chairman of the committee, BJP MP P.P. Chaudhary, moved the motion to extend the tenure of the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. The bill seeks to introduce simultaneous polls to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The motion was adopted by voice vote in the House. Several BJP MPs, including from Jharkhand, today staged a protest at Parliament premises over the alleged paper leak of the Jharkhand Public Service Commission examination, demanding a CBI inquiry into the case and the resignation of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma and reviewed the ongoing relief efforts in the wake of the devastating floods in Upper Assam. In a social media post, Dr. Sarma said that the Union Home Minister reiterated that all agencies and resources of the central government are at the disposal of the people of Assam during this difficult time. Meanwhile, relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Sipsagar, Golaghat, Charaideo and Jorhat. With the situation gradually returning to normal, floodwaters have receded from most affected localities, although some areas remain inundated. India has strongly condemned recent attacks on several maritime vessels in the Strait of Hormuz, saying targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end. Permanent representative of India to the United Nations, P. Harish, said, after a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. Mr. Harish said that free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways must be restored. The Supreme Court dismissed a plea filed by the Odisha government against the release of the film Mahaprabhu Jagannath, saying that animation is a new form of art created for children and cannot be curtailed because of such petitions. A bench comprising Justices B.V. Nagarathna and R. Mahadevan heard the arguments and declined to modify its earlier order, which allowed the release of the film. The Odisha government had contended that the release of the film could create law and order issues after objections were raised by some sections on the depiction of Lord Jagannath. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats, and address the declining number of wild tigers. Vice President and Prime Minister extend greetings to the wildlife enthusiasts on the day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that with the world's largest wild tiger population, India's success reflects sustained efforts in habitat conservation, scientific monitoring, anti-poaching measures, and the unwavering dedication of forest personnel, scientists, conservationists, and local communities. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्यों को गति देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। निर्णय और नीति आम नागरिकों के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होने पर दिया जोर। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर के दुम्मा प्रवेश द्वार पर राजकीय श्रावणी मेले का किया विधिवत शुभारंभ। मेला अवधि में स्पर्श पूजा पूरी तरह रहेगी बंद। आज देश भर में मनाया जा रहा आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। राज्य में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी। सीआरपीएफ ने सीसीएल के एनके और पेपरवार एरिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला किया बरामद। और रांची में 135वें डोरंट कप प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम और श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण

0: हार के महत्व पर जोर दिया। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज देवघर स्थित बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में नगर विकास सह पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने राजकीय श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान मंत्रियों ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की और कांवरियों के मार्ग का शुभारंभ किया। श्रावणी मेला अवधि में स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान श्रद्धालु केवल बाह्य अर्घ्या के माध्यम से जलार्पण कर सकेंगे। रांची नगर निगम ने कल से शुरू हो रहे पवित्र सावन महीने को लेकर पहाड़ी मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों में सफाई, पेयजल, लाइट और सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहाड़ी मंदिर परिसर और मार्ग पर 100 सफाई कर्मी, स्वर्ण रेखा घाट पर 40 और शहर में 1200 कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षित आवाजाही के लिए स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और पेड़ों की डालियों की छटाई की गई है। नगर निगम ने पहाड़ी मंदिर और प्रमुख शिवालयों के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं करते बल्कि अपने शिष्यों को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण करते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर राज्य के युवा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बोकारो में युवाओं से अपील की कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा रखें, सीएम युवाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे।
2: हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया, जैसे ही संज्ञान में मिला कि कोई चिंटियां पाई गई, गौड़ियां पाई गई, लोग जेल में है, वो चेयरमैन है, उनका इस्तीफा लिया गया है। हमारी सरकार पारदर्शिता की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम लोग खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, युवाओं से अपील करेंगे, हमारी सरकार युवाओं के साथ।
1: बोकारो जिले में एसआईआर के डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि गोमिया, बेरमो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हुआ है, जबकि बोकारो विधानसभा क्षेत्र में भी 99.66% डिजिटाइजेशन हो चुका है। उपायुक्त ने सभी ईआरओ और एईआरओ को एक बार फिर डेटा का सत्यापन करने को कहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआईएसएफ ने सीसीएलएनके और पेपरवार कोल्डफील्ड में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में छिपाकर रखा भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया। सहायक कमांडेंट हर्ष लवानिया के नेतृत्व में टीम ने पेपरवार एरिया के कांटा संख्या 9 के पास दो जगहों से कोयला जब्त किया। वहीं कमांडेंट अमित कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय संपदा की चोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा, अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय में कल 37वीं कॉरपोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें खदान सुरक्षा और श्रमिक कल्याण पर मंथन हुआ। बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों, वैधानिक अनुपालन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और महिला कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं और अलग सुरक्षा व्यवस्था पर सुझाव दिए। झारखंड के आदिम जनजातियों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने, उनके शिक्षा, भाषा और संस्कृति के संरक्षण को लेकर रांची में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में असिस्टेंट प्रोफेसर अभय सागर मिंज सहित कई विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी।
3: राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम जो हमारे रांची में हो रहा है, ये अति संवेदनशील जनजातियों के लिए हो रहा है, जरूर ये लोग मंथन कर रहे हैं, जहाँ

0: कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से की है, IIM वगैरह लोगों से लोग आए हुए हैं, टिस से लोग हैं और बहुत सारे ऐसे सिविल बॉडीज हैं जो इस पे मंथन कर रहे हैं।
1: गुवाहाटी से देवघर के लिए विमान सेवा 4 अगस्त से शुरू होगी। गुवाहाटी से 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार उड़ान सेवा उपलब्ध रहेगी। झारखंड में बढ़ते ब्रेन मलेरिया के मामलों में नियंत्रण लाने के लिए इलाज की पद्धति में बदलाव की नीति पर मंथन किया जा रहा है। रिम्स के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. देवेश कुमार ने बताया कि चाईबासा के गोयलकेरा में ICMR और NIMR की देखरेख में शोध जारी है।
2: फैल्सीपेरम मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया कहला रहा है या ब्लैक डेथ जिसको कहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी डेथ होने के चांसेस और सीवियर मलेरिया का फॉर्म होता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में, सेकंड डे पे प्राइमोक्विन देते हैं, तो उसी पे शोध चल रही है, 5 राज्यों में चल रही है, उसमें झारखंड भी है। फैल्सीपेरम मलेरिया का काफी प्रेवलेंस है यहाँ पर।
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर, जबकि निफ्टी 248 अंक की वृद्धि के साथ 24,233 पर कारोबार कर रहे थे। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। 135वें डोरंड कप में आज बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में दूसरा मुकाबला होगा। इस मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम का सामना श्रीलंका की डिफेंडर्स FC से होगा। डिफेंडर्स FC जमशेदपुर FC से 0-5 की हार के बाद आज के मैच में वापसी की कोशिश करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स विजयी शुरुआत के इरादे से मैदान में उतरेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्यों को गति देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होने पर दिया जोर। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर के दुम्मा प्रवेश द्वार पर राजकीय श्रावणी मेले का किया विधिवत शुभारंभ। मेला अवधि में स्पर्श पूजा पूरी तरह रहेगी बंद। आज देश भर में मनाया जा रहा आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। राज्य में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी। CISF ने CCL और NK तथा पिपरवार एरिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला किया बरामद। और रांची में 135वें डोरंड कप प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम और श्रीलंका के डिफेंडर्स FC के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरंजनी। उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे कलाकार सिप्रा बोस से मिस्र खमाज ठुमरी, साजन अब घर आजा चंचर।

0: Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species, but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
1: India has made significant strides in conservation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. The tiger population has increased from 2,226 to over 3,600. Tiger reserves have expanded from 47 to 58, and elephant reserves have also gone up from 28 to 32. Underscoring the country's growing commitment to water conservation, designated Ramsar sites have also grown from 26 to 100.
2: Designated Ramsar sites ki sankhya 26 thi, jo badhkar ke ab 100 ho gayi.
0: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says center to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने

0: की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
5: हाँ।
4: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
7: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
8: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी, वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी, वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी, जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

फिल्म स्वदेश से आप सुन रहे हैं ये प्यारा सा गीत, आवाज़ ए आर रहमान की, संगीत से सजाया ए आर रहमान ने, शब्द रचना जावेद अख्तर का।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसद परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग की कि कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए।
1: झारखंड के अंदर जेपीएससी घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। उत्पात सिपाही दौड़ में हमारे 16 युवा मारे गए, कौन न्याय देगा? क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी देते उनके परिवार को? एक हाथ में सुरमा और एक में वो, हम तो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे।
0: वहीं जमशेदपुर से लोकसभा सदस्य विद्युत वरण महतो ने राज्य सरकार की नीतियों और हालिया परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल उठाए हैं।
2: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है, अभी उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली में 17 सिपाही का जो मृत्यु हुआ है उसको हम लोग मांग करते हैं कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसके लिए हम लोग धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: सुरक्षा बलों ने झारखंड, बिहार और ओडिशा में आतंक का पर्याय बने 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर मिस्टर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। आईबी, सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से बेसरा को उसके 2 सहयोगियों के साथ दबोचा गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज लगातार दूसरे दिन सीआईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल उनसे 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। एम्स देवघर के डॉक्टरों ने पहली बार बिना बड़े ऑपरेशन के एक 14 वर्षीय बच्चे के दिल का सफल इलाज किया है। अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन तकनीक का उपयोग करके जटिल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को पूरी तरह ठीक कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर में आस्था के महापर्व राजकीय श्रावणी मेला का आज झारखंड बिहार सीमा के दुमा प्रवेश द्वार पर पारंपरिक शुभारंभ हो गया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार ने कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
3: सनी से आग्रह करते हुए हम तमाम चौथे प्रयास को इकट्ठा करते हुए श्रावण मास से महायज्ञ को सप्तम कराने में हमारी को रेखा अपनी झूठे तौर के निर्वहन का आग्रह करता हूँ और मैं यह समझता हूँ कि महादेव की कृपा से यह सावन का मेला बहुत अच्छे से गति होगा।
0: लोहरदगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना पर प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी 2,93,871 मतदाताओं के प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस सामूहिक प्रयास के बाद अब आगामी 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। लोहरदगा मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद एक कैदी की संदिग्ध मौत के बाद आज कुड़ू प्रखंड के पंडरा में ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कुड़ू रांची मुख्य पथ को करीब 2 घंटे तक जाम रखा, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। आज पूरे राज्य में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य भर के प्रमुख मठों, मंदिरों और आश्रमों में सुबह से ही गुरु पूजन और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विशेष रूप से जामताड़ा जिले के धार्मिक स्थलों पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिले के नारायणपुर प्रखंड में बराकर नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध दुखिया बाबा मंदिर और नाला प्रखंड के देवलेश्वर धाम में हजारों की संख्या में नर नारी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
1: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस

0: वर्मा जी का। इसके साथ साथ
1: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका। संदेश भेजने के लिए निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
1: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
1: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
1: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
1: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
1: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
1: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हमें निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

मातृभूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मातृभूमि। आशा है कि ये संगीतमय कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को। जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए

0: 1923 में वो लिंटन साइट और एक जगह किराए पर मिली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन, हाँ मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया।

0: है?
1: जैसा तुमने कहा था।
0: अच्छा,
1: ये देखो।
0: हेलो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
1: छोटे छोटे छेद?
0: हाँ,
1: उनसे क्या होगा?
0: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
1: अच्छा।
0: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
1: वाह।
0: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
1: चलो करके देखते हैं।
0: इसको इसमें छेद तो कर दिए। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
1: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
0: हाँ हाँ ठीक है। अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
1: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
0: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
1: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी मन से बात हो रहा है। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको दबाया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखता हूँ कि क्या होता है। विलियम।
1: हाँ जॉन।
0: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
1: करता हूँ।
0: हाँ, और सुनो।
1: हाँ,
0: आप कमरे में अंधेरा करो।
1: एक मिनट।
0: हाँ,
1: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
0: हाँ ठीक है। और सुनो, स्क्रीन ऑन करो।
1: हाँ ठीक है।
2: अरे वाह जॉन।
0: हाँ
2: देखो सामने।
0: अरे हाँ,
2: क्या बात है।
0: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
2: हाँ जॉन।
0: हाँ,
2: हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
0: हाँ
2: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
0: तुम्हें विलियम, बहुत बहुत बधाई।

स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।

0: आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है, वो विशेष व्यक्ति हैं जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
1: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
2: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
1: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
2: हाँ आइए। यहाँ?
1: हाँ आइए आइए, इस तरफ।
2: इधर?
1: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ इधर, हाँ थोड़ा सा
2: इधर।
1: हाँ अब ठीक है। हाँ एक, साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
0: ये तो कमाल हो गया, आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स एन अनबिलीवेबल मिरेकल।
1: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म टू स्टेट से, आवाजें अरिजीत सिंह और चिन्मया श्रीपदा की, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने और शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य का।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म इश्क से, आवाजें उदित नारायण और विभा शर्मा की, संगीत सजाया अनु मलिक ने, शब्द रचना जावेद अख्तर का।

0: क्या?
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म दिल का रिश्ता से, आवाजें अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की, शब्द रचना समीर का और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

अगला और आखिरी गीत आपको सुनाते हैं फिल्म परम सुंदरी से, आवाजें सोनू निगम और कृष्ण कली साह और सचिन जिगर की। संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने, सब रचना अमिताभ भट्टाचार्य का।

और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। मुझे यानी अपनी दोस्त पूजा को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसद परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग की कि राज्य कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज लगातार दूसरे दिन सीआईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल उनसे 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। सुरक्षा बलों ने झारखंड, बिहार और ओडिशा में आतंक का पर्याय बने 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर मिसर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। आईबी, सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से बेसरा को उसके 2 सहयोगियों के साथ दबोचा गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं। देवघर में आस्था के महापर्व राजकीय श्रावणी मेला का आज झारखंड बिहार सीमा के दुमा प्रवेश द्वार पर पारंपरिक शुभारंभ हो गया है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। एम्स देवघर के डॉक्टरों ने पहली बार बिना बड़े ऑपरेशन के एक 14 वर्षीय बच्चे के दिल का सफल इलाज किया है। अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन तकनीक का उपयोग करके जटिल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को पूरी तरह ठीक कर दिया है। गुमला में संवेदक संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। संवेदकों ने ऑनलाइन रॉयल्टी चालान की अनिवार्यता से हो रही परेशानी को दूर करने और विगत 4 वर्षों से लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। भेंटकर्ता कमलेश कुमार मिश्र और प्रस्तुति प्रभु शरण की।
2: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। श्रोताओं, हम अपने जिंदगी में बेहतर तब कर पाते हैं जब हम जागरूक होते हैं, जब हम में ये मालूम होता है कि हमारी सरकार हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई है, हमारी सरकार हमारे लिए कौन से पॉजिटिव इनिशिएटिव की शुरुआत की है जो हमारे लिए है। आपको जागरूक रहना जरूरी है। बढ़ते कदम कार्यक्रम भी वही काम करता है। आपको सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजनाओं की पूरी जानकारी लाकर देता है। आपको उन इनिशिएटिव्स के बारे में बताता है जिससे हम और आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम योजनाओं की बात नहीं करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम देश के सबसे बड़े उस प्रक्रिया की बात करने वाले हैं जो हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं SIR की। SIR चल रहा है, हम सभी जान रहे हैं, और झारखंड में SIR की प्रक्रिया 30 जून को शुरुआत हुई थी और 29 जुलाई को इसका आखिरी दिन है जो कि आज है। अभी जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो शाम तक ये जो इनोमरेशन फॉर्म्स आपको दिए गए हैं वो आपको एनी हाउ आज सबमिट कर देना है। आज कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि बहुत बड़ी प्रक्रिया, देश की सबसे बड़ी ये प्रक्रिया जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए, हम आप शामिल हुए, और ये हमारे लिए आपके लिए जरूरी है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रशासनिक के साथ साथ जो हमारे शिक्षक हैं, जो जिन्हें DLOs बनाया गया, जो अलग कर्मचारी हैं जिन्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो अपने काम के साथ साथ फील्ड में जाकर SIR में अपनी महती भूमिका निभाई। आज हम एक DLO से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को अरेंज्ड किया, अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरी की, उन्हें क्या ट्रेनिंग मिली थी, इनमिग्रेशन फॉर्म भरवाने के दौरान में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल टास्क था, तो वो भी समझेंगे कैसे वो इस मुश्किल टास्क को उन्होंने पूरा किया और कैसा अनुभव रहा। हमारे साथ में ज्योत्सना कुमारी है, ये

0: एंड द प्रूड सरोवर नगर की डीएलओ है और इनकी जिम्मेदारी ये एरिया रही और लोगों को मिलना, इनमेशन फॉर्म देना, फिर भरवाना, फिर रिसीव करना और समझाना। ज्योतिषा जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, और आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार।
0: आपकी जो एनर्जी है मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले भी देखा कि आप जब क्षेत्र में जा रही थी और जब ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो घर घर भी आप गई, तो सबसे पहले कैसा अनुभव रहा? ये 30 जून से आज का ये दिन है, कैसा अनुभव रहा आपका?
1: शुरुआत में तो मुझे दिक्कत आ रही थी लोगों को समझाने में, लोग समझ भी नहीं पा रहे थे मेरी बातों को कि क्या SIR के बारे में बहुत सारी भ्रामकता फैली हुई है। लोगों को डर है कि अगर मैं SIR फॉर्म सही से नहीं फिल करूंगा तो मुझे बाहर भेज दिया जाएगा या देश से बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। SIR फॉर्म एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट होते हैं, मतदाता सूची, उसको वेरीफाई करना होता है और उसको अपडेट किया जाता है, जिसमें जो भी सही मतदाता है वो रहते हैं और जो जिनकी कुछ भी त्रुटि है वो अपना फॉर्म अगर अच्छे से सबमिट फिल करते हैं तो उनका भी नाम रहता है। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि गलती हो जाएगी चाहे ये हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि SIR जो है, जो भी वोटर्स से अगर उनका दो बार नाम आ जाता है या जिनकी मृत्यु हो गई है या जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, वैसे वोटर्स की ही सूची बनाई जाती है, मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है।
0: यानी हम लोगों को ये समझना, हालांकि अब तो क्योंकि आज आखिरी दिन है और मैं इसमें भी जानूं क्योंकि आप लोगों के दिमाग में हो कि बहुत सारे लोग नहीं भर पाए तो उनका क्या होगा, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन श्रोताओं के लिए यही है कि ये एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जो होती है और एक अपडेशन है, एक गहन पुनरीक्षण है कि फिर से सारी चीजों को देखना है कि वोटर सब है या नहीं है या बाहर चले गए। आप जब फील्ड पे जा रही थी तो वो कॉमन सवाल ज्यादा क्या आप लोगों को फेस करना पड़ रहा था जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा था?
1: सबसे बड़ी बात कि SIR जो लास्ट 2003 का लिस्ट मांगा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को वो सूची नहीं मिल पा रही है कि 2003 में वो तो उनका कहना था कि मैंने तो वोट नहीं दिया है, मैं वोट दिया नहीं हो तो मेरा नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने वोट दिया हो या नहीं दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि उस समय वो उनका वोटर आईडी कार्ड था कि नहीं, वो मतदाता सूची में थे कि नहीं। अगर वो नहीं थे तो वो उनके पेरेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स के द्वारा भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो ऐसी कोई भी ये नहीं है। वोटर्स उस समय वोट दिए हो ना दिए हो उससे कोई मतलब नहीं है, वोटर्स का नाम उस समय वोटर लिस्ट में था, ये जरूरी महत्वपूर्ण बातें हैं।
0: एक ये सवाल आ रहा था कि 2003 में तो हमने वोट दिया नहीं, और कौन कौन से सवाल थे जो ज्यादा फेस करने पड़ रहे थे?
1: सबसे बड़ी समस्या तो यही थी 2003 SIR वाली। दूसरी समस्या थी कि जो भी वोटर्स थे उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो उनके अंदर थी कि जानकारी नहीं मिल पा रही तब मैं ये फॉर्म कैसे फिल करूं। लेकिन अगर जानकारी नहीं मिल पा रही है 2003 की तो कोई बात नहीं है, आप नीचे वाला जो कॉलम है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनके उनका डिटेल जो देना पर्सनल डिटेल, वो आप भर के साइन करके फोटो चिपका के आप इनोग्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
0: ठीक है, मैं श्रोताओं को पहले तो एक जानकारी दे दूं क्योंकि आज आखिरी दिन है, आप जब ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो अभी दिन भर का समय है और जो ज्योतिषा जी बता रही है और आपने नहीं भरा है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप फॉर्म को तो फिल करके दे ही दे, वो आपको अपने पास नहीं रखना है, मैं सही कह रहा हूँ?
1: हाँ हाँ, फॉर्म को हर हालत में आप फिल कीजिए। 2003 का अगर आपको डिटेल नहीं भी मिल रहा है तो नीचे का जो डिटेल है, जन्म तिथि है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, पेरेंट्स का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, और जो आप अगर पति पत्नी जिनकी शादी हो गई है, पति का नाम, पत्नी का नाम जरूर लिखिए, माता पिता का नाम जहाँ लिखा हुआ वहाँ अभिभावक भी है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि पिता के नाम की जगह पे अभिभावक का नाम लिख दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अभिभावक वो होते हैं जो उनको पाले केयर टेकर के रूप में होते हैं, वहाँ पिता का नाम ही लिखे, पति का नाम ना लिखे अभिभावक के रूप में, नहीं तो फिर फॉर्म फिल करने में दिक्कत होती है। आप भरिए और उतना डिटेल दे के आप जरूर फॉर्म फिल करिए, फिर उसके बाद अगर आपको नोटिस जाती है तो कुछ 12-13 के डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगाइए, और फिर अगर उससे भी आपको दिक्कत होती है तो आप अंचल में भी जाके अपना दावा पेश कर सकते हैं।
0: थोड़ा सा इस पे और डिटेल में बात करते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आए। एक जरूरी बात आपने बताई कि आपके पास 2003 का लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप फॉर्म जरूर भरे, जो तीसरा कॉलम है,
1: बिल्कुल
0: डिटेल दे के आप फॉर्म को सबमिट कर दे,
1: बिल्कुल
0: हो सकता है कि बाद में आपको नोटिस आए,
1: हाँ,
0: तो उस वक्त में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा।
1: हाँ, अगर आपको नोटिस मिलती है तो आपको 12-13 के डॉक्यूमेंट से वो आप सबमिट कीजिए, आपका नाम चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा? आप इस देश के नागरिक हैं, तो दूसरी जगह आपको क्यों भेजा जाएगा? आपके पास जो भी दावा है आप अपनी तरफ से दावा पेश कीजिए, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है।
0: हाँ, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है जो हमने देखा, और आपसे बात करने का उद्देश्य भी है क्योंकि आप फील्ड पे जा रही हैं, आप लोगों से मिल रही हैं, तो ये लोगों में एक डर है। हाँ, पढ़े लिखे लोग भी ये बात कर रहे हैं, क्या ये भी फेस आपकी? आप खुद भी एक शिक्षक हैं, तो आपने देखा किस तरह के सवाल और लोगों के दिमाग से आ रहे थे?
1: जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, सब एक तो भ्रामकते इतनी फैली हुई है ना कि अगर मैं फॉर्म नहीं फिल करूंगा या किसी तरह की गलती हो जाती है, मेरा सूची में नाम नहीं आता है, तो मुझे इस देश से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश तो ऐसा आ रहा है ना नाम, समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आप फॉर्म फिल किए हैं, अगर किसी तरह का आपको नोटिस मिलता है, तो आप 12 तरह का डॉक्यूमेंट है उसको आप लगा सकते।
0: 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स है?
1: हाँ।
0: आप बताएंगे वो 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है?
1: जी जी बिल्कुल। किसी भी केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश जो है वो लगा सकते हैं पहला। दूसरा है कि 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज आप लगा सकते हैं।
0: ठीक है।
1: तीसरा, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं।
0: ठीक है।
1: सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं।
0: ठीक है।
1: वन अधिकार प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी मौजूद हो उसको आप लगा सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर लगा सकते हैं।
0: ठीक है।
1: सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आधार की प्रति देने पर ऊपर बताए गए 11 दस्तावेजों में से किसी भी एक स्वसत्यापित प्रति भी आप जमा कर सकते हैं।
0: यानी आधार दिए तो बाकी जो 10 है उसका किसी का एक फोटोकॉपी पे खुद का साइन करके आप दे सकते हैं।
1: अटेस्टेड करके आप वो प्रमाण लगा सकते हैं जब नोटिस आएगी तब।
0: हाँ। यानी सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि आप अपने मन में किसी तरह की कोई दुविधा रखे ही नहीं। अगर इस बार आप फॉर्म भरे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया या फिर 2003 के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, परेशान नहीं होना है। आपके पास एक नोटिस आएगी तो आपके पास ये 12 दस्तावेज है, इनमें से कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: जिनके भी मतदाता का नाम SIR की मतदाता सूची में दर्ज है, यानी कि लास्ट SIR में है उनका नाम, तो उनको किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगानी है। वो अपने जो डिटेल्स है 2003 के लास्ट SIR वाले, वो अपने बेटे बेटियों के लिए भी यूज कर सकते हैं।
0: तो आप दिमाग से अपने सवाल को खत्म करें, और इस बार आपको लग रहा है कि कुछ चीजें त्रुटि रह गई, कुछ चीजें गलत हो गई, आप 2003 में नई सूची में आपका नाम नहीं मिला जबकि आप वोट करते थे, या फिर वोट नहीं भी करते थे फिर भी सूची में नाम नहीं मिला, तो भी परेशान नहीं होना है। नोटिस आती है तो आप उससे संबंधित पेपर को सबमिट करेंगे, प्रक्रिया में आप फिर से आ जाएंगे। एक बात आप बताएं कि आप बता रहे थे कि इसमें कुछ क्राइटेरिया भी है।
1: हाँ बिल्कुल। वैसे मतदाता, भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी वर्तमान के मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है, तो वैसे लोग फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र के साथ जन्म तिथि के अनुसार स्वयं अपना, माता पिता या स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज आप निम्न प्रकार से दे सकते हो। उसमें कैटेगरी बांटी हुई है ABCD।
0: अच्छा।
1: हाँ, यदि आपका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आपको सिर्फ स्वयं का दस्तावेज देना है। वैसे मतदाता जिनका वर्तमान मतदाता सूची में नाम नहीं है, वैसे मतदाता जो 18 साल के हो गए हैं, एडल्ट हैं, लेकिन उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, वैसे मतदाता क्या करें? बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं। तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है और भारत में हुआ है, तो आपको सिर्फ अपना दस्तावेज देना है
0: 1987 से पहले।
1: हाँ, 87 से पहले।
0: हाँ,
1: हाँ। और जिनका जन्म 1987 से 2012-2004 के बीच हुआ है, वैसे बी कैटेगरी के मतदाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनका जन्म अगर भारत में हुआ है तो आपको अपने स्वयं के साथ साथ माता अथवा पिता की

0: एक का दस्तावेज देना होगा।
1: अच्छा, अगर आप
0: एक साथ
1: 1987 यानी 1987 से 2/12/2004 यानी 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अपने माता या पिता किसी एक का भी डॉक्यूमेंट देके सबमिट कर सकते हैं। हाँ, जी आगे
0: जी। फिर वैसे कैटेगरी बी हो गया, कैटेगरी सी वाले मतदाता, यदि आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, भारत में हुआ है, तो आपको स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज देना जरूरी है।
1: यानी कि अगर आप दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको अपने माता और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट साथ में देना होगा। आखिरी क्राइटेरिया क्या है?
0: आखिरी ग्रुप डी वाले जो है, यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं आपके माता पिता भारतीय नागरिक है, तो आपको आपके जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास से जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।
1: यानी हर किसी के लिए समाधान यहाँ पे है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: आपके पास जानकारी होनी चाहिए और अब तो ये क्लियर हो गया कि इतने सारे चार क्राइटेरिया भी, इवन आप बाहर है तो आपको अपने माता पिता का भी पेपर लगाना है, प्लस आप जहाँ पे जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के भारतीय दूतावास से आपको अपना जन्म सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र देना होगा। आप एक बात बताएं, अब बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल चल रहा, मैं आपसे वो भी समझना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए किसी भी वजह से, तो उन्हें फिर दोबारा मौका कब मिलेगा? क्या अब नाम उनका शामिल नहीं हो पाएगा? ये भी भ्रांतियां चल रही हैं।
0: जो भी फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे अगर, तो उनको तो नोटिस मिलेगी। फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए तो उनके नाम से नोटिस मिलेगी, अगर मिलती है आप दावा पेश कीजिए। अगर नहीं भी मिलती है तो भी आपने, अगर आप कंफर्म है कि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, आप अपने जो भी BLOs है या ब्लॉक में आप जाके मिलिए, अपना दावा पेश कीजिए,
1: फिर प्रक्रिया में आएंगे।
0: हाँ, प्रक्रिया में आएंगे।
1: यानी अगर छूट भी गया किसी वजह से, अगर आप नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं होगा, वो प्रोसेस लगेगा, फिर थोड़ा समय लगेगा।
0: हाँ, समय लगेगा, लेकिन नाम तो जुट जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है।
1: तो कहीं से भी SIR को लेकर किसी भी भ्रांति को आप लेकर आगे नहीं बढ़े। आपकी बात करूंगा आप ज्योतिषा जी, आप पहले पेशे से क्या हैं आप बताएं? मैंने ऐसे बताया शिक्षक है, आप कहाँ पे पढ़ाती है?
0: मैं देवी मंडप रोड हेसल में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हूँ।
1: तो मैंने आपसे ऐसा हालांकि अनुभव पूछा, कितना ये चुनौतीपूर्ण रहा आप लोगों के लिए कि एक शिक्षिका होके आप स्कूल भी देख रही है, कि आप लोगों को स्कूल भी देखना है, कैसे मैनेज हो रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सफर अब तक का?
0: स्कूल तो देखना ही पड़ता है, बच्चों से जुड़े हुए हम लोगों को, तो बच्चों को तो नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन लेटर भी निकली हुई है कि काम को, ये SIR काम को ज्यादा प्राथमिकता देना है, तो मैनेज हो जा रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
1: एक अनुभव, एक नया अनुभव भी रहा आप लोगों के लिए, इतने बड़े प्रक्रिया में शामिल हुए। आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे हुई, कहाँ पे हुई, आप लोगों को क्या पहले समझाया गया?
0: हम लोगों की ट्रेनिंग अंचल वहल में हुई थी, वहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग दिए थे वहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर और जो भी पदाधिकारी थे जिनको कार्य संभाल दिया गया था, उन लोगों ने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हम लोगों को दिया था। ट्रेनिंग में सारी प्रक्रिया को बताया गया था कि कैसे करना है, SIR का फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, लोगों के बीच में जब हम जाएंगे तो कैसे उनसे बात करना है, अगर कोई लोग मेरी बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको कैसे संतुष्ट करना है, उनको सारी प्रक्रिया के बारे में कैसे उनको बताना है कि वो संतुष्ट हो जाए, फॉर्म अच्छे से फिल कर ले, यही सब हम लोगों को जानकारी दी गई।
1: हाँ, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चुनौती फील्ड में आपको ये रही होगी कि कई बार आपको लगा कि आपने अपने स्तर से तो उनको समझा दिया, लेकिन उनके जो क्वेरीज है वो खत्म नहीं हो रही, ये भी एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का?
0: हाँ, तो वैसे लोगों को तो मैं ये भी बोल देती हूँ, बहुत सारे हम लोगों को पेम्पलेट दिया गया है।
1: हाँ,
0: जिसमें SIR के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो मैं उन लोगों को बीच बांट देती हूँ कि आप इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सही से फॉर्म फिल कीजिए।
1: ज्योत्सना जी, मैं जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने देखी, क्योंकि मैं भी तो इसका एक, मैं भी मतदाता हूँ, मैं भी प्रोसेस से गुजरा, और जैसे हमारे मम्मी हुए, पापा हुए, बहुत सारे लोग ऐसे, एक समस्या फील्ड पे हमने देखा, और मैं आपसे वो समझना चाह रहा हूँ कि उसको आपने कैसे शॉर्ट किया, क्योंकि बहुत लोग थे जो ये बता रहे थे कि हमने वोट किया है, 2003 में वोट किया है, लेकिन जब वो वोटर लिस्ट में अपने नाम को तलाश रहे हैं तो उनका वोटर लिस्ट पे नाम नहीं मिल रहा है, ये समस्या बहुत देखने को मिली।
0: नहीं, जिन्होंने भी 2003 में वोट किया है और जिनका भी मतदाता 2003 में मतदाता सूची में नाम है, वो अपने नाम को ECINET ऐप के द्वारा खुद से भी देख सकते हैं। उस ऐप में जाके जो भी आपको डिटेल्स भरना है, उसमें जनरल डिटेल्स भरना है, जैसे कि आपके कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और पोलिंग स्टेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, किस जिले से आप संबंधित है, लास्ट SIR 2003 के जो मतदाता पहचान पत्र है उसमें आपका नाम क्या है, उसमें आपका संबंधी किसका नाम है, अगर आप शादी हो गई, अगर महिला है तो हो सकता है उनके पिता का भी नाम हो सकता है, उनके पति का भी नाम हो सकता है, जिनका भी नाम है वो डिटेल अगर आप सही सही भरते हैं तो ECINET ऐप के द्वारा आप स्वयं से भी 2003 की जानकारी दे सकते हैं। ऐसी बात है, आपने अगर वोट किया है 2003 में, मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपका लिस्ट में भी नाम होगा ही, जरूर होगा।
1: लोगों में डिजिटल साक्षरता आप लोग कितना देखें, आपको कितने ऐसे लोग मिले जो डिजिटली कि हाँ वो थोड़ा मोबाइल फ्रेंडली भी थे, उनको पहले से भी जानकारी, वो सर्च भी कर रहे हैं। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हर चीजें डिजिटल हो रही हैं, लोगों को उनके मोबाइल तक चीजें पहुंचाई जा रही हैं। सो आप जब फील्ड पे गई, क्या इसका एक असर, कितने लोग जागरूक नजर आए आपको अलग अलग जगहों पे?
0: जागरूक तो बहुत, स्टार्टिंग में तो बहुत कम लोग जागरूक थे, धीरे धीरे अभी जागरूकता तो बढ़ रही है, बहुत बढ़ गई। इसलिए तो अच्छे से SIR कंप्लीट भी होने जा रहा है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोग SIR फॉर्म फिल कर सके। देखिए, ने अभी डिजिटाइज जो भी डिजिटल वर्ल्ड जो चल रहा है, बहुत लोग उससे जागरूक नहीं है, बहुत लोग उसको अच्छे से सही से कर भी नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, आप कैफे तक जाइए, कैफे में जाके आप निकलवा लीजिए अपना डिटेल देके,
1: यही ऑप्शन है, लेकिन लोग जागरूक भी नजर आ रहे हैं।
0: हाँ,
1: अब डिजिटली भी जुड़ रहे हैं वो।
0: हाँ बिल्कुल, जागरूक नजर आ रहे हैं जिन लोगों को 2003, बहुत सारे ऐसे भी आए थे वोटर्स हमारे पास कि मैडम मेरा नहीं निकल रहा है 2003 का लिस्ट, क्या करना है, कैसे करना है। तो जब मैं उन लोगों को बताई कि आप ये ECINET आप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से, उसमें अपने नंबर से लॉगिन कीजिए, उसके बाद उनको जो जो जानकारी मांगी गई है उसको आप सही से भरिए। एक दो लोगों को मैंने करके दिखाया तो वो तो स्वयं से भी कर सके और दूसरे लोगों को की भी उन लोगों ने मदद की। तो सिखाने से आदमी कुछ भी सीख सकता है, जागरूक हो रहे हैं वो,
1: धीरे धीरे आ रहा है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ ज्योत्सना जी हैं और ये स्कूल की शिक्षिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और उसी एनर्जी के साथ बीएलओ की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। कितने वर्षों से आप बीएलओ के तौर पे काम कर रही हैं?
0: बीएलओ तो मैं अभी नहीं बनी हूँ, 6 मंथ हो रहा होगा।
1: 6 मंथ?
0: हाँ 6 मंथ।
1: तो ये स्पेसिफिक इस काम के लिए आपको बीएलओ बनाया गया या बाकी चीजों की भी जिम्मेदारी आप लोगों पे दी जाती है?
0: बीएलओ तो अभी मुझे स्पेसिफिक SIR के लिए बनाया गया है। मैं नई, जैसे कि किसी भी बूथ में अगर 1300 से ज्यादा वोटर्स है तो उन बूथ को छोटा किया गया है। ज्यादा वोटर्स होने से वैसे बीएलओ को काम करने में दिक्कत होती है, तो एक नया बूथ बनाया गया। तो मैं तो नए बूथ की बीएलओ हूँ। तो जैसे मुझे जानकारी मिली है कि अभी जब मतदाता सूची जब प्रकाशित की जाएगी अक्टूबर में, 10 अक्टूबर को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, तो उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड 282 बूथ जो देवी मंडप रोड हेसल प्राथमिक विद्यालय हेसल का है, वहाँ की मैं बीएलओ हो जाऊंगी।
1: तो कई अधिकारियों से हमने बात की, लोगों ने कहा कि एक ये प्राउड मोमेंट है कि देश के एक इतने बड़े प्रक्रिया से जुड़कर उस प्रक्रिया को पूरा करने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना, ये एक प्राउड मोमेंट है। सो आपको भी फील प्राउड होता है कि आप एक महत्वपूर्ण मिशन में कह सकते हैं आप शामिल हुई, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं भी बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे SIR के लिए काम को दिया गया और मैं अपनी काम को जितने मुझे सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया, अपनी तरह से पूरी प्रयास कर रही हूँ कि मैं उस काम को अच्छे से करूँ।
1: तो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ज्योत्सना कुमारी से, ये बीएलओ है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। SIR की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज के प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही था कि अगर किसी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए तो अब क्या, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। पेपर्स नहीं है तो फिर क्या, उसका भी आपको जवाब मिल गया। और कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। अब मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूं, मैं आपको बता दूं कि आज आप ये कार्यक्रम का प्रसारण सुन रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड हमने 22 जुलाई को किया था, तो मैं आपको एक डाटा साझा कर रहा हूं जो 22 जुलाई तक का है। अगर हम रांची जिले की बात करें तो जो टोटल बीएलओ है, तमाड़ से 303, सिल्ली से 279, खिजरी से 413, रांची से 374, हटिया से 496, कांके से 482 और मांडर से 430, यानी कुल 2777 बीएलओ हैं जो फील्ड पे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। और अगर टोटल इलेक्टर्स के इन रांची जिले की बात करें तो 26,74,681। साथ ही आपको बताएं कि मैप्ड एज प्रोगनी की अगर हम बात करें तो 9,11,514 और मैप्ड एज सेल्फ जो खुद से किया गया था वो 5,77,997। तो जो मैपिंग की प्रतिशत रही, जो मैप्ड परसेंटेज रहा वो 55.69 रहा और जो मैपिंग नहीं हो पाई वो कुल है 1,21,884 और इसमें जो मैपिंग परसेंटेज है वो 4.56 जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई। अब वैसे वोटर परसेंटेज की बात करें जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए या दूसरी जगह चले गए उनकी मृत्यु हो गई या एक ही वोटर के दो दो बार नाम आ गए, वो है 78,277 और वैसे लोग जिनका डेथ हो गया और आज भी सूची में वो है वैसा जो परसेंटेज है वो 2.93। यानी ये जो रांची का 22 जुलाई तक का डाटा है जो हमने आपके साथ साझा किया, हालांकि आज 29 है तो ये फिर डाटा अपडेट हो चुका है और शुरुआत में जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारी अड़चने आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, भ्रांतियां ज्यादा थी, सवाल बहुत ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे लोग ये समझने लगे कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें सभी को शामिल होना जरूरी है तो फिर एक अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आने लगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे कर्मचारियों ने निभाया, बीएलओज ने निभाया, अधिकारियों ने निभाया। और आपके लिए बस इतना ही कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कुछ भी छूट गया या कुछ भी गलत रह गया। ज्योत्सना जी, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल आपसे, कोई एक मैसेज आज आप जो लोगों को देना चाहती हैं?
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बुलाया है इस मंच पे। आज लास्ट दिन है, अभी भी जो भी वोटर्स हैं जाइए, अपना फॉर्म फिल कीजिए और जमा कीजिए, छोड़िए नहीं, भूलिए नहीं,
1: छोड़िए नहीं, भूलिए नहीं। आज दिन भर का भी समय है, फॉर्म जरूर भरिए, परेशान नहीं होना है। और कुछ गलतियां हो गई तो कोई बात नहीं, बाद में उसका समाधान निकलेगा। बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी यही होती है, ऐसे ही हम तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आते हैं। अपने अगले कार्यक्रम में फिर एक महत्वपूर्ण विषय, नए मेहमान के साथ आएंगे, बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे जो जवाब आपके लिए होंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: बढ़ते कदम, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सूत्रधार थे कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।

किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चलें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे। युवाणी कार्यक्रम 5:02 से। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है इंटरनेशनल टाइगर डे। इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में इससे संबंधित चर्चा भी होगी। रोचक तथ्य और समसामयिकी विषय पर कुछ जानकारी साझा की जाएगी। कंपेयर हैं पूजा और तरंजीत। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता गौरव पांडे।

श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे आज इस कार्यक्रम में महिला श्रमिकों के अधिकार विषय पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और मातृत्व लाभ योजना पर भी चर्चा होगी। श्रम की शक्ति राष्ट्र की प्रकृति विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। सूत्रधार हैं कुमारी आरती और महिमा गोल्डन बिलोंग। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। खेती बाड़ी कार्यक्रम शाम के 6:02 से। आज चर्चा का विषय इस कार्यक्रम में बरसात में पशुओं की देखरेख, प्रश्नोत्तरी का विषय है खरीफ दलहनी फसलों की देखरेख। इस पर जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी।

हमारी दुनिया कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:32 से। इसमें आज चर्चा का विषय दिखावा बर्बादी का कारण। साथ में हिंदी वार्ता भी आप सुन सकेंगे नारी शक्ति देश की तरक्की विषय पर। वार्ताकार हैं पुनीता कुमारी। प्रस्तुति होगी इस कार्यक्रम की प्रभु शरण की। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 बजे प्रसारित किए जाएंगे। जिले में आजकल 7:11 पे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम 7:15 पे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय वन्य जीव जंतुओं का शिकार अपराध है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता गौरव कुमार पांडे। प्रायोजित कार्यक्रम रात्रि 7:45 और संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे से आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत रात्रि 8:15 से और रात्रि 8:30 पे। सुर्खियों में कार्यक्रम आप सुन सकेंगे।

संसद में प्रश्नकाल रात्रि 10 बजे से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। यह था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से।

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। रचना अनजान की थी और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जेलर का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, रचना राजेंद्र कृष्ण की थी, संगीत मदन मोहन का था। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म सफर का गीत मुकेश की आवाज में, इंदिवर की रचना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: श्रोताओं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, बस तुरंत हाजिर होते हैं अगले गीत के साथ।
1: जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
2: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
1: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
2: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
1: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
2: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम में फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दुख गया आसमां से। आवाज मोहम्मद रफी की है, रचना आनंद बख्शी की और संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आप फिल्म झुक गया आसमां का गीत सुन रहे थे। आवाज थी मोहम्मद रफी की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, और इस गीत के लिए धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ आज का सांझ सरगम कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं, आइए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2,20,00,000 के इनामी माओवादी कमांडर मिसर बिश्रा को धनबाद से गिरफ्तार किया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 1,500,000 का इनामी मेहनत और एरिया कमांडर गौरव को भी दबोचा है। इनके पास से 3 AK-47 राइफल और 288 कारतूस मिले हैं। राज्य भर में आज संत गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर भाजपा द्वारा सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता महापर्व अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने जा रही है। इन कैफेटेरिया में मोटे अनाज यानी श्री अन्न से बने स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन उपलब्ध होंगे। चतरा में आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के IG शैलेंद्र कुमार ने रामगढ़ और चतरा जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान IG ने दोनों जिलों की कानून व्यवस्था, उग्रवादी विरोधी अभियानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रांची की महापौर रोशनी खलको ने आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। शाम के 5:02 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी संध्याकालीन सभा।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गायिका अनुराधा पौडवाल के स्वर में चंद फिल्मी नगमे। शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:02 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे मनोरमा कार्यक्रम। 7:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद जिले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा।

7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। रात के 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल का रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गुलदस्ता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायिका अनुराधा पौडवाल के स्वर में चंद फिल्मी नगमे। कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म साथी से।

0: आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायिका अनुराधा पौडवाल के स्वर में चंद फिल्मी नगमे।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: गुलदस्ता कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही गुलदस्ता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, बारिश का मौसम है और मौसम खुशनुमा भी है। चारों ओर हरियाली दिखने लगा है, साथ ही नदी नालों और तालाबों में पानी भरने लगे हैं और ऐसे समय में मछली पालकों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है, जिससे वे भविष्य में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसी समय यानी जून और जुलाई के अंत में या फिर जुलाई के शुरुआत में ही छोटी मछलियों के जीरे जब तालाब में जल संग्रह हो जाए तो फिर छोड़ देना चाहिए और इनके लिए पौष्टिक चारा भी देते रहना चाहिए ताकि मछलियां जल्द से जल्द बड़े हो सकें। वैसे खास करके रोहू, कतला, झींगा तथा मागुर मछली ज़्यादा पालते हैं, लेकिन सभी किस्मों को एक साथ नहीं पालना चाहिए। झींगा मछली भी हमारे स्थानीय बाजारों में बहुत ज़्यादा इसकी मांग है और अच्छा कीमत भी मिलता है, इसलिए इसे आप विशेष करके उड़ीसा राज्य से मंगा करके अपने तालाबों में पाल करके कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए पूर्व से ही तालाब की सफाई और अनुकूल वातावरण बनाए रखना होना चाहिए। मछली पालन में किसी प्रकार का घाटा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लाभ। मछली जितने बड़े आकार के होंगे उतना ज़्यादा आपको मूल्य भी मिलेगा। इसलिए किसान भाई बहनों, मछली पालन करना हमारे अतिरिक्त आय के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। हम ऐसे खेतीबाड़ी के साथ साथ तालाबों में, जो भी डोभा में या फिर उस छोटे क्षेत्रों में भी मछली पालन कर सकते हैं। आजकल आधुनिक तरीके से कुछ हाउस जैसे सीमेंट के बनाए होते हैं, उस पर भी मछली पालन कर रहे हैं और अलग अलग प्रजाति के अलग अलग किस्मों के मछली पालन से बहुत ज़्यादा लाभ भी मिल रहा है। तो ये हमारे लिए आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो किसान भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी तालाब हो या फिर छोटे मोटे डोभा हो, आप बरसात के दिनों में पानी अगर संग्रह हो जाए और उसको अच्छी तरह से बांध कर रखें, पानी बाहर ना जाए, अगर जा भी रहा हो तो उसमें जाली लगा दें ताकि आपके छोटे छोटे मछलियाँ बाहर नहीं निकल सके। और इनके लिए समय समय पर जो भी धान की भूसी या गोबर, जो भी खाने के लिए पौष्टिक आहार जो है, ये भी देते रहना चाहिए। तो किसान भाई बहनों, इन सभी बातों को विराम देते हुए हम आगे और भी चर्चा करेंगे, मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन इसके पूर्व हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक उड़िया लोकगीत सुरभि पान एवं साथियों के स्वर में।

0: तो किसान भाई बनो, अभी हम आनंद ले रहे थे इस उड़िया लोकगीत का। कलाकार थे सुरभि फान एवं साथीगण, और इस लोकगीत के पश्चात हम एक प्रबुद्ध कृषक से मिलते हैं जो बेमौसमी खेती पर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। समय के रहने के कारण हम देखते हैं कि बाज़ारों में किस सब्जी की ज़्यादा मांग है, हम उसी को देखते हुए मौके की तलाश में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके इसकी खेती करें तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो बेमौसमी खेती में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे करें, कब करें, इन सभी बातों को लेकर के हम मिलते हैं एक प्रबुद्ध कृषक के साथ। किसान भाई बनो, आज हम खेती गृहस्थी कार्यक्रम में एक प्रबुद्ध और युवा कृषक से मिलते हैं। आज हमारे बीच में एक युवा कृषक के रूप में भीमसेन नायक जी हैं, तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
1: जोहार।
0: तो आपके इस बागान में देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह दिख रहा है और इतना सुंदर मैंने बागवानी किए हैं कि मचान वगैरह और लगाने का तरीका देख करके हमको काफ़ी खुशी भी लगा जी। और हर प्रकार के यहाँ सब्जी देखा जा रहा है, धीरे धीरे इसका सब चर्चा करेंगे। विशेष करके लतरदार सब्जी बहुत कुछ लगाए हैं, तो हम लोग लतरदार सब्जी के लिए मचान की तैयारी और लगाने की तैयारी हम कैसे करते हैं, शुरुआत में हम किस तरह का इसका खेत की तैयारी करेंगे, इस पर हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो भीमसेन जी ये बताएं कि जो बीज लगाए हैं, बहुत प्रकार के लतरदार सब्जियां हैं जैसे करेला, बरबट्टी और झिंगनी है, तरोई है, तो ये सब शुरुआत में जो बीज लगाए तो खेत के अच्छी तरह से जुताई तो किए होंगे ना
1: जी? जुताई तो होता ही है, जुताई नहीं होने से तो बीज भी अच्छा नहीं होता है ना। जुताई होना चाहिए,
0: भुरभुरा होना चाहिए,
1: भुरभुरा होना चाहिए, नहीं तो बीज भी अच्छा नहीं होता है।
0: अच्छा, तो पहले से दो तीन जुताई करके इसको मिट्टी को पूरा प्लेन बना लेते
1: हैं। प्लेन बना लेते हैं, उसके बाद लगाया जाता है।
0: अच्छा,
1: होने से घास सब भी नहीं रहता है ना, घास सब रहने से अच्छा भी नहीं होता,
0: खरपतवार नहीं रहना चाहिए,
1: खरपतवार नहीं रहना चाहिए।
0: तो सिर्फ पौधा लगा दिया तो फिर ये जो पतले छिलके वाले होते हैं तो बहुत जल्दी तो उग जाते होंगे? नहीं
1: जी, वो सब तो उगना ही है, मतलब किसी का भी खेत में देखिएगा तीन चार बार जुताई करने से भी घास सब उग ही जाता है।
0: हाँ, नहीं नहीं, जो सब्जी है और लगाए से करेला और बरबट्टी हुआ, चाहे कोई ये सब हो गया, तोरई वगैरह सब, तो ये सब लगाने के बाद आजकल गर्मी के मौसम में तो जल्दी तो निकलते होंगे ना ये सब?
1: हाँ, निकलते तो हैं, मतलब सीजन के हिसाब से, जैसे अभी लगाएंगे तो निकलेंगे जल्दी।
0: हाँ,
1: मतलब जैसे
0: मिट्टी
1: गर्म रहता है ना अभी तो। हाँ, हाँ, हाँ। पानी ज्यादा खोजता है इसीलिए थोड़ा।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी जो गर्मी ऋतु में लगाए हैं तो ये थोड़ा सा थाला जो है उसका लगाने का तरीका, वो थोड़ा सा गड्ढा किस्म किए हैं और बरसात में थोड़ा ऊंचा करते हैं, इसका क्या कारण है
1: जी? देखिए, मतलब बरसात में तो पानी ज्यादा होता है ना, अगर पानी ज्यादा लग जाएगा या पौधा में तो मर जाएगा ना,
0: मर जाएगा, जड़ भी तो,
1: जड़ भी तो मतलब उतना पानी लेगा उन्हें तो नहीं सहन कर पाएगा, इसीलिए। और गर्मी सीजन में तो क्या बोलेंगे, पानी का बहुत दिक्कत रहता है ना।
0: हाँ,
1: पानी भी सूख जाता है।
0: अच्छा,
1: तो इसीलिए मतलब ज्यादा समय तक चले एक ही बार पानी, इसीलिए गड्ढा करते हैं हल्का।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो
0: उसमें थाले में गड्ढा रहता है तो थोड़ा सा नमी रहता है और पानी भर देने से बहुत दिन तक नमी रहता है ना?
1: बहुत दिन तक नमी रहता है, होने से मतलब जल्दी जल्दी पानी भी नहीं पटाना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: मतलब सबका होता है, होने से सभी कोई मिलकर पटाते हैं।
0: हाँ,
1: हम ही डेली पटाएंगे तो लोग भी ना बोलेगा,
0: हमने पानी का कमी है इस गर्मी
1: में, इसीलिए।
0: अच्छा अच्छा, इसीलिए बहुत सारे किसान जो है उनका खेत खाली पड़ा हुआ है, आपके इस कुछ क्षेत्र में हरा भरा दिख रहा है ना
1: जी? मतलब पानी भी तो इधर हम लोग का पानी है, मतलब उधर भी वैसे ही होगा, कौन ज्यादा किया है तो उसका ज्यादा लेगा पानी, इसीलिए ऐसे ही होता रहता है इधर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो लगाने के बाद में आप कम से कम 8-10 दिन में निकले होंगे पौधे। अच्छा, पौधे निकलने के बाद एक चीज देखा जाता है कि जो लाल रंग के जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, उड़ने वाले कीट, ये सब परेशान तो करते होंगे पौधों में ना?
1: जी हाँ, ये जो परेशान करते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, किसी भी पौधा में देने से कीड़ा तो होता ही है।
0: हाँ,
1: तो मतलब बड़ा होता है ना थोड़ा थोड़ा।
0: अच्छा,
1: उसी समय हम लोग यह स्प्रे कर देते हैं, थोड़ा जहरीला टाइप से दे देते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: उस से मर जाता है कीड़ा सब। अच्छा, और मतलब और नहीं होता है कीड़ा।
0: हाँ, जो पत्ता जो पत्ती छेदक होते हैं वो बाद में अब नहीं आते हैं,
1: और नहीं आते हैं, मतलब
0: उसका गंध से नहीं आते,
1: गंध से नहीं आते हैं, वो दवाई हुई ऐसे है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये सब किसमें किसमें लगभग ऐसे आते हैं, मैंने खीरा, झींगा और कोहड़ा वगैरह ये सब में आते हैं क्या?
1: जी हाँ, ये सब में अधिकतर ये सब में आते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
2: तो ये एक बार छिड़कने के बाद में और दोबारा देना पड़ता है कि वो हमेशा के लिए वो लगभग ठीक हो जाता है?
1: नहीं, हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, मतलब छोटा ही रहता है होने से होता है, बड़ा हो के बाद तो उतना नहीं होता है।
2: अच्छा, मैंने पत्ती बड़ा होने के बाद नहीं होता
1: उसके
2: है।
1: बाद नहीं होता है,
2: शुरुआती में ही इस तरह का होता है। अच्छा, फिर इसको लगाने के बाद में आप लोग शुरुआत में क्या यहाँ पर कोई गोबर खाद या रासायनिक खाद क्या सब डालते हैं शुरुआत में?
1: शुरुआत में तो ऐसे ही गोबर खाद डालते हैं, जब बड़ा हो जाता है हल्का एक दो हाथ जैसा, उसके बाद गोबर खाद नहीं है, रासायनिक खाद
2: अच्छा,
1: देते
2: थोड़ा बहुत
1: हैं
2: मिलाते हैं,
1: जी,
2: मैंने उसमें कोड़ाई करते हैं
1: कोड़ाई
2: सामने।
1: करते हैं, उन्हें से रासायनिक खाद से और हल्का बड़ा हो जाएगा और फूल पौधा देने का लिया
2: अच्छा, मैंने
1: जाएगा
2: थोड़ा बहुत मिट्टी चढ़ा देते हैं उसमें
1: जी,
2: जड़ में।
1: मिट्टी चढ़ा देते हैं
2: अच्छा, हाँ, तो लतर
1: जड़
2: जितना
1: पर
2: अच्छा
1: भी
2: मजबूत होगा उतना ज्यादा मैंने फलने का ये भी फैलेगा ना।
1: जी।
2: अच्छा, जैसे लतर बढ़ते जाता है तो उस समय आप लोग उसका सहारा के लिए मचान के लिए किस तरह का तरीका अपनाते हैं?
1: पहले तो ऐसे ही मतलब पेड़ उड़ काट के मचान दे देते थे, लेकिन आजकल पहले चलने उलने का भी सुविधा नहीं होता था ना, तोड़ने का भी सुविधा नहीं होता था,
2: हाँ,
1: आजकल तो ऐसे ही रस्सी सब देते हैं खूंटा में गाड़ के,
2: अच्छा बांस
1: मतलब
2: वगैरह
1: चल,
2: का,
1: हाँ बांस, उसका
2: हाँ
1: चलने का भी अच्छा सुविधा होता है,
2: अच्छा
1: तोड़ने का भी
2: अच्छा
1: अच्छा सुविधा होता है, मतलब ऐसे खाली खाली दिखता है, अच्छा दिखता है उन्हें से, और ऐसे ही पेड़ उड़ दे देने से तो पूरा झाड़ी
2: खेत
1: जैसा
2: भरा
1: दिखता
2: हुआ
1: है ना,
2: रहता है,
1: भरा
2: हाँ
1: हुआ दिखता है, तोड़ने का भी अच्छा सुविधा नहीं होता है,
2: लतर इधर उधर फैल
1: हाँ
2: जाता है,
1: लतर इधर उधर फैल
2: बंधा हुआ
1: जाता है,
2: रहता है,
1: चलने से अगर लतर में पैर लग जाएगा तो खराब हो जाएगा,
2: हाँ
1: टूट
2: टूट
1: जाता
2: जाता
1: है,
2: है, सही
1: इसीलिए
2: बात है,
1: ऐसे अच्छे से करना ही अच्छा है जी।
2: हाँ सही बात है। तो ये तरीका सब आप कहाँ से सीखे कि जो अच्छे अच्छे किसान लोग बड़े किसान लोग लगाते थे उनका देख करके ये तरीका अपनाए क्या?
1: जी हाँ, मतलब क्या बोलेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ कैसा खेती करते हैं,
2: अच्छा,
1: मतलब उधर अगर हम लोग इधर नहीं किए हैं तो हम लोग भी इधर ट्राई करके देखते हैं
2: हाँ हाँ
1: होगा कि नहीं,
2: सही
1: इधर
2: बात है, सही बात
1: वैसे करना चाहिए,
2: है,
1: उधर लगा रहे तो हम लोग भी लगा के देखेंगे, अगर होगा तो अच्छा बात है, सबको ही लगाएगा होने से वैसे
2: हाँ सुविधा भी
1: जी,
2: होता है।
1: सुविधा भी होता है।
2: तो ये
1: अरे
2: रस्सी वगैरह लगाए हैं तो ये तार का है कि मैंने कोई रस्सी है क्या, नायलॉन का रस्सी है,
1: हाँ, नायलॉन का ये अरोही ज्यादा मजबूत होता है ना,
2: मजबूत होता है,
1: हाँ
2: अच्छा
1: मतलब वो ज्यादा भारी चीज को भी मतलब नहीं खराब नहीं होता इतना जल्दी, वो बहुत
2: मैंने नहीं
1: मजबूत
2: टूटता है,
1: नहीं टूटता है वो।
2: अच्छा, मैंने इसमें जो भी बरबट्टी करेला और तोरई और झिंगनी जो भी है ये सब मैंने आराम से उठा सकते हैं और
1: जी,
2: लतर फैलते रहेगा,
1: लतर फैलते रहता है और वो रस्सी ठू मजबूत होता है, और उतना झाड़ होने से भी रस्सी कुछ नहीं होता है,
2: हाँ।
1: इसीलिए
2: तो भीमसेन जी एक चीज ये भी कहना चाहेंगे, लौकी कोहड़ा या फिर और भी जब सब्जी जो है
1: जी
2: करेला वगैरह सब पहले लोग लगाते थे जमीन में इधर उधर लगा के फिर लतर जो फैलता था जमीन में ही पूरा भरा हुआ रहता था, फैला हुआ रहता था, तो उनका फल और ये जो मचान में अभी लगाए हुए हैं
1: जी
2: तो दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं?
1: देखिए, पहले मतलब कैसे लगाते थे, जमीन में पूरा दे देते थे, पहले का क्या, जमीन में जैसे होता था तो
2: हाँ
1: जमीन में सटा हुआ भाग अलग दिखता था
2: हाँ
1: और ऊपर
2: बात
1: में
2: है,
1: अलग दिखता था, और
2: अच्छा,
1: आजकल ऐसे मचान में देने से क्या बोलेंगे, फल भी अच्छा होता है,
2: हाँ
1: उसका साइज भी अच्छा होता है,
2: अच्छा,
1: और ऊपर में देने से उसका लंबाई भी अच्छा होता है,
2: हाँ
1: और मतलब तोड़ने उड़ने का भी सुविधा अच्छा
2: सुविधा,
1: होता है,
2: रंग भी
1: और
2: अच्छा मतलब
1: रंग
2: ताजा
1: भी
2: दिखता है,
1: ताजा दिखता है, और ऐसे पहले के जमाने में जैसे देते थे जमीन में वैसे लतर सब भी खुंदा जाता था ना,
2: अच्छा, हाँ पैर में लग जाता था तोड़ के
1: पैर में
2: से,
1: लग जाता था, इधर उधर पूरा झाड़ी कर देता था पहले,
2: हाँ
1: इसलिए अच्छे से करना ही अच्छा है,
2: हाँ
1: तोड़ने उड़ने का भी सुविधा होता है ऐसे में
2: अच्छा, सही
1: जी।
2: बात है। और ये जो मचान बनाए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी और चलने फिरने में भी, तो इसमें कीटनाशक चाहे कोई भी चीज़ छिड़काव करने में या फिर और चीज़ में भी सिंचाई में भी सुविधा होता होगा नहीं?
1: हाँ, ये सब में मतलब क्या बोलेंगे, कीटनाशक सब भी उस सब छिड़काव करने में अच्छा ही सुविधा
2: हाँ
1: होता
2: लाइन
1: है,
2: लाइन चलने में
1: लाइन
2: सुविधा
1: लाइन
2: होता
1: चलने में, और इधर उधर चलने में तो देखिए, या पौधा सब भी अगर पैर में लग
2: है,
1: जाएगा
2: हाँ लग जाए
1: तो
2: खराब हो
1: खराब
2: जाता
1: हो जाएगा,
2: है, हाँ होता
1: इसीलिए ऐसे का मचान में ही करते हैं,
2: है,
1: और ये सब कुछ का सुविधा ही होता है वैसे में,
2: हाँ
1: तोड़ने का भी, फल भी अच्छा, सब्जी भी अच्छा होता है।
2: अच्छा, मचान आप लोग किस तरीके से मैंने ऊंचाई का ये करते हैं, मैंने फल के हिसाब से या फिर किस तरह से कितना ऊंचाई में सुविधा रहता है?
1: मतलब फल के हिसाब से ये कैसे बोलेंगे, भरबट्टी सब देखिए, वो सब ज्यादा
2: ज्यादा वजन
1: ज्यादा
2: नहीं है,
1: वजन नहीं है, और
2: हाँ
1: ज्यादा ऊपर में देंगे तो तोड़ने का भी
2: तोड़ने का
1: सुविधा नहीं है,
2: सुविधा होगा
1: इसीलिए वो साइज का ही देते हैं, मतलब
2: मजबूत
1: आसानी से
2: ऊंचा सके,
1: आसानी से वो सब तोड़ने का सुविधा हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि वो सब ज्यादा भी फलता है ना,
2: हाँ,
1: उसमें
2: अच्छा
1: टाइम भी ज्यादा लगता है
2: हाँ
1: तोड़ने के लिए, और जैसे हुआ लौकी कोहड़ा सब,
2: वो तो भारी फल
1: वो
2: है,
1: सब भारी फल है, और वो सब उतना ज्यादा नहीं होता है ना, वो सबको इसीलिए ऊंचा में देते हैं, 5 फीट तक में लगभग दे देते हैं,
2: हाँ
1: मतलब
2: सर से फिर थोड़ा सा नीचे तो उतर ही जाएगा,
1: नीचे नीचे उतर ही जाएगा। नीचे उतरने से और का तोड़ने में भी सुविधा होता है, एक ही जैसा रहता है नीचे नीचे।
2: अच्छा,
1: और ऐसे ही रख देने से तो इधर उधर रहेगा, खराब भी हो जाता है, अच्छा भी नहीं दिखता है, इसीलिए मचान करके ही ऐसे ठीक होता है सब।
2: अच्छा,
1: भारी भी होता है ना वो, इसीलिए ऊपर में देने से अच्छा
2: जितना
1: होता है।
2: बढ़ते जाएगा फल जैसा हाइब्रिड का होगा तो बड़ा बड़ा होता ही है,
1: बड़ा होगा उसका वजन भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा नीचे देने से भी वजन से और नीचे आ जाएगा ना, तो जमीन में लग जाएगा, इसीलिए वजन वाला सब ऊपर में ही देते हैं।
2: लकड़ी या बांस का कुछ सहारा देते हैं,
1: कुछ सहारा देते हैं, सब वजन ज्यादा होता है ना, इसीलिए उसका थोड़ा मजबूत सहारा देते हैं जो वजन सब्जी सबको।
2: अच्छा
1: जी,
2: अच्छा आप लोग का ये जो नीचे का खेत में दो तीन प्लॉट में इस तरह का भिंडी का ही नजर आ रहा है, तो इसमें भिंडी अभी क्या निकल रहा है, मैंने कितना हो गया, डेढ़ दो महीना हो रहा है कि कब से शुरुआत हो गया?
1: हाँ मतलब एक दो महीना हो रहा है, निकल गया मतलब।
2: हाँ, उस सब तो छोटा समय से ही,
1: हाँ, छोटा समय छोटा से ही निकलता है उस सब तो,
2: गर्मी का।
1: हाँ गर्मी गर्मी ऋतु में तो जितना छोटा मतलब जितना तो या तोड़ो भिंडी उतना फलते जाता है,
2: फलते जाता
1: जी, उतना बड़ा होते जाएगा।
2: हमेशा सिंचाई भी चाहिए,
1: सिंचाई भी चाहिए और तोड़ते भी जाना है।
2: अच्छा अच्छा,
1: मतलब उस सब में ज्यादा तोड़ना ही तोड़ाई ज्यादा होता है, एक बार हल्का बड़ा हुआ उसके बाद फल फूल शुरू हो जाता है।
2: अच्छा अच्छा
1: जी, और उस सब में मतलब क्या बोलेंगे, उस सब ज्यादा झाड़ झाड़ नहीं देना चाहिए, दूरी बना करके, नहीं तो तोड़ने उड़ने में भी हाथ तो उतने लग जाने, पत्ता सब में तो ये सब
2: खुजलाता
1: है, पत्ता सब ऐसे होता है।
2: अच्छा, ये बात तो सही है, कहे कि थोड़ा सा रोमा टाइप का उनके पत्ते में मैंने दिखता है तो खुजलाट हो जाता है, देर तक ज्यादा काम करने, और धूप ज्यादा लग जाता है और परेशान हो जाता है
1: जी। आजकल तो धूपे है, वैसे सुबह सुबह में तोड़ना पड़ता है।
2: हाँ।
1: सुबह सुबह में जल्दी उठ के आ जाने से
2: अच्छा
1: ठीक ही होता है, और धूप में तो इतना धूप में तो कैसे होगा
2: काफी गर्मी,
1: गर्मी में इधर।
2: अच्छा आपके क्षेत्र में पटल वगैरह कोई खेती करते हैं क्या, उसमें इसका इस तरह का जमीन में कुछ होने का संभावना है?
1: हाँ होते किए, एक दो साल हो गए इधर किए हैं, मतलब एक बार दूसरे गाँव में किए थे तो वहाँ देख के भी इधर किए तो अच्छा ही हो रहा है, तो करते हैं इधर भी, मतलब उधर किए हैं दूसरा इधर आगे तरफ में, उधर ठीक ही हुआ है, वो लोग करता है हर साल, अभी मतलब एक दो साल हो गया वो लोग करते रहता है।
2: हाँ,
1: इधर भी
2: सीजन में अगर निकलता है तो उनको अच्छी मुनाफा भी मिलता।
1: हाँ,
2: है नहीं,
1: आजकल तो यही सीजन है ना सब सबका, तो
2: हाँ,
1: इस सीजन में ही निकलता है और इस सीजन में उसका बिक्री भी अच्छा होता है।
2: हाँ, बहुत सारा
1: शादी ज्यादा चलता है जी।
2: हाँ तो इस समय उसका मैंने सीजन भी पहुंच जाता है और रेट भी अच्छा मिलता है ना।

0: क्या कि गर्मी के ऋतु में तो ज़्यादा सब्जी का बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम ही लोग लगाते हैं
1: जी। गर्मी का सीजन में पानी का ज़्यादा दिक्कत होता है ना, वही बात है,
0: वही बात
1: है। तो पानी होने से तो ज़्यादा ही खेती होगा।
0: हाँ, तो आप क्या इसमें सालों भर कुछ ना कुछ सब्जी मैंने हमेशा लगाते रहते हैं?

0: हम तो रेट बहुत कम ही मिलता है।
1: वो तो बात सही है, इसलिए बेसीजन को देखते हुए ये खेती करते हैं।
0: बेसीजन में लगाने से भी अच्छा ही, मतलब अपना हिसाब से दाम मिलता है, जैसा बोलने से वैसे मिलता है।
1: अच्छा, जो भी सब्जियां आप लतरदार वाले लगाए हैं, तो ये जो खेत में आते हैं कभी खरीदने वाले या फिर बाजार में बेचते हैं, तो क्या सब कुछ वजन में बेचते हैं कि अंदाज करके ऐसे बेचते हैं, किस तरह का है?
0: आजकल तो ऐसे अंदाज में तो बहुत कम बेचते हैं, आजकल तो वजन में सब कुछ बिकता है। वजन में सब कुछ बिक रहा है, वजन में छोटा छोटा चीज भी वजन में बिक रहा है। वजन का ही जमाना है आजकल।
1: हाँ सही बात है। और जिस तरह से खेती बाड़ी में भी सिंचाई के लिए जो खर्च हो रहा है, चाहे पेट्रोल का हो या फिर बिजली का हो या फिर जो सब्जी का जो बीज है, वो भी तो हाइब्रिड का लगाते हैं तो काफी महंगा होता है, और उस हिसाब से जैसा मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से सही रेट मिल रहा है बाजार में आपको?
0: रेट ठीक है मिल रहा है, क्या बोलेंगे, मतलब लाते हैं उधर से फिर जाने का, वो सब सब मेंटेन हो जाता है, मुनाफा भी होता है सीजन हिसाब जल्दी लगाने से तो, और बाद में लगाने से तो हल्का ये होगा ही,
1: क्योंकि कोई
0: लगाएगा ना पहले ही लगा देगा
1: तब
0: रेट घट जाता है, इसलिए पहले ही लगा देने से तो अच्छा ही होता है।
1: अच्छा, थोड़ा सा आगे पीछे लगाना चाहिए,
0: आगे पीछे लगाना चाहिए उतना भी।
1: और दूसरे को भी जब देख रहे हैं आप किसान को, सब कोई टमाटर या बैगन लगा रहे हैं, तो उससे हट के दूसरा सब्जी लगाना चाहिए क्या?
0: हाँ, मतलब जो जब वो लोग लगा रहा है उतना ही तो, और लगा के उन लोगों से अच्छा रेट भी नहीं मिलेगा ना, बहुत ज्यादा निकल जाएगा, इसलिए वो लोग लगा रहा है तो दूसरा दे देना चाहिए। वो लोग टमाटर लगाए होने से आप भिंडी लगाओ ऐसे दूसरा कुछ भी दे देना चाहिए, अलग अलग वैरायटी लगाना चाहिए। और एक ही ज्यादा होने से भी रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा।
1: सही बात है। तो आपके इस बागान में तो देखते हैं कि हर प्रकार का सुविधा है, हर प्रकार का सब्जी मिल जाता है, तो यहाँ डायरेक्ट आपके यहाँ बागान में खरीदने वाले आ जाते हैं क्या?
0: हाँ, मतलब जरूरत पड़ता है तो आते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, अभी
1: जानकारी
0: है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, जानते हैं जो, तो शादी में तो आएंगे यहाँ लेने,
1: पूरा ज्यादा सब्जी
0: ज्यादा चाहिए उन लोग को, तो ज्यादा वाला सब आते हैं ऐसे ही
1: उनको सही रेट में, और अच्छा सामान भी मिल जाता है।
0: हाँ, और हम लोग को जाना भी नहीं पड़ता है, यहीं से बिक्री हो जाता है,
1: थोक बिक्री हो जाता है, तो ज्यादा परेशानी भी नहीं होता है, मैंने अपना खेत से डायरेक्ट मिल जाता है, सही बात है। अच्छा, सिंचाई के लिए आप लोग कब कब करते हैं, मैंने नमी को देखते हुए करते हैं कि ऐसे ही बीच बीच में करते रहते हैं?
0: मतलब नमी को देख के करते हैं, ज्यादा ही सूख जाता है होने से करते हैं, नमी हल्का रहने से नहीं करते हैं उससे।
1: हाँ,
0: पानी का भी बचत करना होगा।
1: हाँ, दिन भर धूप लगा हुआ रहेगा, काफी गर्मी से ये मिट्टी भी गर्म हो जाती है, तो फिर ऐसे स्थिति को देखते हुए मैंने किस समय पटाने से ठीक रहता, सिंचाई कब करते हैं, मतलब सुबह सुबह करते हैं या फिर शाम को करते, कब करना चाहिए
0: सिंचाई? तो शाम को ही करना अच्छा है, ताकि शाम को अंधेरा में होने से ज्यादा धूप में नहीं करना, ज्यादा धूप में करने से पानी ज्यादा टानता है जमीन ठो, ज्यादा मतलब
1: गर्म
0: रहता है ना, होने से मुरझा जाता है पौधा ठो। शाम को अंधेरा समय में करने से पौधा भी अच्छा रहता है और ज्यादा पानी भी नुकसान नहीं होता है।
1: तो आप लोग खेत सिंचाई के लिए ये मशीन वगैरह अपने से सब कुछ व्यवस्था किया?
0: जी हाँ, मतलब इतना खेती कर रहे हैं तो सिंचाई का तो अपने से ही होना चाहिए
1: व्यवस्था करने में। जी अच्छा, मैंने बिजली का भी सुविधा है और ऐसे पेट्रोल वगैरह दोनों प्रकार का?
0: हाँ, बिजली से भी, मतलब पेट्रोल नहीं होने से बिजली से भी पानी का सिंचाई होता है, लाइन नहीं होने से टूलू से, पेट्रोल से भी होता है, दोनों ही है।
1: कभी बिजली का तो कोई निश्चित नहीं कब जाएगी कब आएगी,
0: इसलिए दोनों रखे हुए हैं। अच्छा, बिजली होने से बिजली से करते हैं, नहीं होने से तेल से करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो भीमसेन जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
0: जोहार।
1: तो किसान भाइयों, अभी हम मिल रहे थे एक प्रबुद्ध कृषक से, और इस मुलाकात के पश्चात हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा मुंडारी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के चेबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में कथित शराब घोटाला और उत्पाद नीति में अनियमितताओं को लेकर एसीबी की कार्रवाई तेज हो गई है। एसीबी ने टेंडर प्रक्रियाओं और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में राज्य के 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी किया है। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने खाद और बीज बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया और डीएपी बेचने की शिकायतों की जांच की। उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को सभी गोदामों की सघन जांच करने और मुनाफाखोरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। रांची के लोअर बाजार थाना में आयोजित जन शिकायत समाधान शिविर में आज वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। एसएसपी ने अधिकारियों को पीड़ितों की जमीन विवाद, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा के मिहिजाम में कानगोई पत्थर डंप के पास फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वसूली करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वसीम राजा ने बताया कि आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 2 वॉकी टॉकी, 2 चाकू और जैप 5 का फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुआ है। सिमडेगा जिले के रेंगारी में एक युवक ने लाठी से पीटकर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक एक्शन मेंज ने शराब के नशे में घरेलू विवाद के दौरान अपने पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के रांची चरण में आज दूसरा मुकाबला इंडियन एयरफोर्स FT और श्रीलंका की डिफेंडर्स FT के बीच शाम 7 बजे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इस रोमांचक मैच के लिए स्थानीय दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोरमा।

0: सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बहनों, स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साफ सफाई हमारे स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुंदर समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो बहनों, आइए अब हम कार्यक्रम में चर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेंगे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में। स्वस्थ रहने से हम कई प्रकार की बीमारियों से बचे रह सकते हैं और हमारे आसपास के वातावरण भी शुद्ध रहता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए सफाई पर ध्यान देते हुए हमें रोज़ नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और खाने से पहले और खाने के बाद भी अच्छे से हाथों की सफाई जरूरी है। इससे हानिकारक कीटाणु और बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, जिससे हम बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। साफ कपड़े पहनने और नाखून काटने से पेट और त्वचा के कई रोग दूर होते हैं। इससे समय और धन की बचत भी होती है, क्योंकि स्वस्थ रहने पर इलाज का खर्च और समय दोनों बचते हैं। और बहनों, हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल तनाव को कम करता है और इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, जिससे हम दिल दिमाग से शांति महसूस करते हैं और ये स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही बहनों, स्वच्छ रहने से व्यक्ति खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और आसपास साफ सफाई रखने से समाज में अच्छी आदतें फैलती है, जिससे सभ्य समाज बनता है और सभ्य समाज बनने से देश का विकास होता है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में सफाई की अच्छी आदतें बहुत महत्व रखती है। बहनों, इस बातचीत के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नहर मेना बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओडा वापस को रुड़ करना धरा रे नाका गे आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब

0: मंगलोरा का गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है लोग आउ का जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम पर
1: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्ते तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जा है
2: मितुम लो बुरम सिंह तमसा है अनिता तमसा है भरुपा सिना करना ऐसे दुकुरन में आई है वापा में रुए तपा में रुए वाह बेटा मित्र
3: अन्यान तुम लोग बुंबई कोड़ा पटन तुम लोग बुंबई कोड़ा अन्यान हम लोग कोडमली कोड़ा पुरो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मिनिमम बुरी ने बाजार तो कि मुनास सीआरपी को लो पुलिस को लो इन लड़ाई चलाओ तमो बुरुवन को यहाँ तो जाए तेरे का कभी वो इन बुको को का कोमल नहीं है
1: अलग मुनि सुरं तो ते आप ही लेकर अलग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन रहते सेशन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया न तुम कहीं न आप ही लेकर
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088585

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे दिल है कि मानता नहीं फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया था कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत के बाद आइए अब हम वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे स्वीट कॉर्न रेसिपी के बारे में। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बरसात के मौसम में भुट्टे या स्वीट कॉर्न बहुत मिलते हैं और भुट्टे का सीजन ही यही है। तो आज हम आप सभी को भुट्टे से बनने वाले स्नैक के बारे में बताने जा रहे हैं और इस स्नैक्स को तीन तरह से कैसे बनाकर हम इसका आनंद ले सकते हैं। और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, साथ ही ये हेल्दी भी होते हैं। स्वीट कॉर्न पोषण से भरपूर होता है, इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इसे हेल्दी स्नैक के रूप में देखा जाता है। खास बात यह है कि इसे घर पर बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है और अपनी पसंद के अनुसार इसमें आप अलग अलग फ्लेवर भी जोड़ सकते हैं या डाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले बटर स्वीट कॉर्न बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले तो हम भुट्टे या स्वीट कॉर्न को उसका छिलका उतार लेंगे और उसके बाद उसके सारे दाने निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे हम उबाल लेंगे। उबालने के बाद स्वीट कॉर्न के सारे पानी को हम निथार लेंगे। इसके बाद अब एक पैन को गैस पर गर्म रखेंगे और उसमें 1 से 2 चम्मच मक्खन डालकर गर्म करेंगे। मक्खन पिघलने के बाद उसमें उबला हुआ स्वीट कॉर्न डालकर 2 से 3 मिनट तक हल्का भूनेंगे। इसके बाद उसमें स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेना है। जब मसाले कॉर्न में अच्छी तरह से मिल जाएं, तो गैस बंद कर दें और ऊपर से ताज़ा नींबू का रस डालें और अंत में बारीक कटा हुआ धनिया डालकर गार्निश करें। तो इस तरह से गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न तैयार है। इसे आप तुरंत सर्व करें ताकि इसका स्वाद और भी बेहतर लगे। इसके बाद आइए अब हम मसाला कॉर्न रेसिपी के बारे में जानते हैं। अगर आप थोड़ा चटपटा स्वाद पसंद करते हैं तो इसी रेसिपी को मसाला कॉर्न में भी बदल सकते हैं। इसके लिए तैयार किए गए कॉर्न में बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अपनी पसंद का थोड़ा मिक्स स्पाइस या लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इससे कॉर्न का स्वाद और भी लाजवाब हो जाएगा। तो इस तरह से मसाला स्वीट कॉर्न तैयार है। बहनों, अगर आपके बच्चों को चीज़ पसंद है तो आप इस रेसिपी में थोड़ा कसा हुआ चीज़ भी मिला सकते हैं। गैस बंद करने से ठीक पहले कॉर्न के ऊपर चीज़ डालें, उसे हल्का पिघलने दें। इससे कॉर्न का स्वाद और भी क्रीमी और लजीज हो जाएगा। इसे आप बच्चों की टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ स्वीट कॉर्न तैयार है। यह स्वादिष्ट और हेल्दी है, इसे सभी को खाना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि यह झटपट और आसानी से बनने वाली स्नैक है। इसे आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। बरसात के मौसम में घर पर आसानी से बनने वाला यह स्वादिष्ट स्वीट कॉर्न न केवल स्वाद का बेहतरीन अनुभव देता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा विकल्प है। कम समय, कम सामग्री और शानदार स्वाद के कारण इसे सभी उम्र के लोग पसंद करते हैं। अगर इस मानसून आप कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो बटर स्वीट कॉर्न मसाला या चीज़ कॉर्न बनाएं, पूरे परिवार के साथ इसका आनंद लें। तो बहनों, अभी हम वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे स्वीट कॉर्न स्नैक्स के रेसिपी के बारे में। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहनों, इस जानकारी के बाद आइए कार्यक्रम के अंत में हम चलते चलते सुनते हैं एक और

बहनों, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनोरमा। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर संसद परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। राज्य में कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी कर 4 अगस्त को किया तलब। देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का मंत्रियों ने किया उद्घाटन। पहले दिन कल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बाबा नगरी पहुंचने की संभावना। और रांची में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा एयरफोर्स और श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी के बीच डूरंड कप का दूसरा मुकाबला। फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। संसद परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग की कि कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए।
9: झारखंड के अंदर जेपीएससी घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। उत्पात सिपाही दौड़ में हमारे 16 युवा मारे गए, कौन न्याय देगा? क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी देते उनके परिवार को? एक हाथ में सुरमा और एक में वो, हम तो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे।
8: झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2,20,00,000 के इनामी माओवादी कमांडर मिस्र बेसरा को धनबाद से गिरफ्तार किया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 15,00,000 का इनामी मेहनत और एरिया कमांडर गौरव को भी दबोचा गया है। इनके पास से 3 AK-47 राइफल और 288 कारतूस मिले हैं।
10: झारखंड पुलिस के लिए स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगी IGFCF, IGCRPF, IGOPS और हमारे SSP धनबाद और SP गिरिडीह, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है।
8: चतरा में आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के IG शैलेंद्र कुमार ने रामगढ़ और चतरा पुलिस के साथ अहम समीक्षा बैठक की। उन्होंने दोनों जिलों की कानून व्यवस्था, उग्रवाद विरोधी अभियानों और सीमावर्ती सुरक्षा की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। राज्य में कथित शराब घोटाला और उत्पाद नीति में अनियमितताओं को लेकर एसीबी की कार्रवाई तेज हो गई है। एसीबी ने टेंडर प्रक्रियाओं और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में राज्य के तीन बड़े अधिकारियों को समन जारी किया है। एसीबी के अनुसार 4 अगस्त को तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह और जेएसबीसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राज्य भर में आज संत गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता महापर्व अभियान की शुरुआत की गई है। इस राज्यव्यापी अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बोकारो सहित विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
7: जहां जुनून मिलेगा इतिहास से, वहां लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
11: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
7: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
11: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
7: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
11: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने जा रही है। इन कैफेटेरिया में मोटे अनाज यानी श्री अन्न से बने स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन उपलब्ध होंगे। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि प्रत्येक प्रीमियम कैफेटेरिया के लिए सरकार पहले वर्ष 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी।
12: पूरे राज्य में मिलेट मिशन के बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ड्राइव भी चलाया था जुलाई में। अभी हम लोगों ने उसमें करीब 22,000 किसानों को एनरोल कराया है। उद्देश्य यही है कि मिलेट्स का प्रोडक्शन में झारखंड जो है पूरे देश का अग्रणी राज्य बने, इसमें हम लोग मिलेट के प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसानों को पैडी फसल के वैकल्पिक फसल के रूप में मिलेट्स की खेती कर सके।
8: रांची के लोअर बाजार थाना में आयोजित जन शिकायत समाधान शिविर में आज वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। एसएसपी ने अधिकारियों को पीड़ितों की जमीन विवाद, धोखाधड़ी और मारपीट जैसी शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
13: चौथा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है और हम लोग एक डेली डेटा शीट भी बना रहे हैं कि कितने शिकायत हम लोग ऑन स्पॉट समाधान कर पा रहे हैं, कितने लंबित हैं, कि बहुत सारे पर FIR इत्यादि भी दर्ज हो रहा है। 1-2 महीने का पीरियड बीत जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और पूर्व में जो लोगों ने शिकायत दी उनका समाधान हुआ या नहीं हुआ।
8: सावन का पवित्र माह कल से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही देवघर समेत राज्य के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देवघर में पहले दिन कल करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इससे पहले आज मंत्री सुदिव्या कुमार और दीपिका पांडे सिंह ने दुम्मा प्रवेश द्वार पर दीप प्रज्वलित कर देवघर के राजकीय श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन किया। उधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी आज राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का पारंपरिक और विधि विधान से शुभारंभ हो गया। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, आयुक्त संजय कुमार और उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इधर रांची में भी सावन माह के पावन अवसर पर विशेष तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रांची की मेयर रोशनी खलखो ने आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का औचक निरीक्षण किया।
14: हर साल जो तैयारी होती है उससे ज्यादा हम लोग तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुगणों को सुविधाएं हम लोग मुहैया करा सके। जहां पर लाइटें नया बदलने की आवश्यकता है उसे नया बदलने के लिए भी ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। इसके साथ ही बाबा की नगरी को पूरा दुल्हन की तरह सजाना है।
8: 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के रांची चरण में आज दूसरा मुकाबला इंडियन एयरफोर्स एफटी और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी के बीच अब से थोड़ी ही देर बाद बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू होगा। इस रोमांचक मैच के लिए स्थानीय दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर संसद परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। राज्य में कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी कर 4 अगस्त को किया तलब। देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का मंत्रियों ने किया उद्घाटन। पहले दिन कल 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के बाबा नगरी पहुंचने की संभावना। और रांची में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा एयरफोर्स और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी के बीच डूरंड कप का दूसरा मुकाबला। फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
15: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के अनुसूचित जाति जनजातीय उद्यमियों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रयास तेज कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड एसटीएससी हब ने कार्यशाला आयोजित कर उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान, वित्तीय सहायता मुहैया कराने, उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पर बात की झारखंड एसटीएससी हब के हेड किरण मारिया तीरू ने।
2: ये जो प्रोग्राम है इसके तहत हम लोग चाहते हैं कि जन जन तक एससी एसटी उद्यमी तक पहुंचे और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से है, जिसमें उनको जागरूकता से लेकर के जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसमें 4% का रिजर्वेशन है उनका हरेक सरकारी निविदा में पार्टिसिपेट करे निविदा में, क्योंकि 4% जो हमारे एससी एसटी उद्यमी गण है उनका पूरा नहीं हो पाता है हमारे सीपीएससीज में, तो उसके लिए ये प्रोग्राम रखी गई है।
1: समावेशी शिक्षा के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना एवं एलिम्को ने पाकुड़ जिले के 6 प्रखंडों में संयुक्त रूप से शिविर लगाकर दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण का वितरण किया। इस पर बात की एलिम्को के डॉक्टर ज्ञानेंदु कुमार सिंह ने।
3: सब शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल हम लोग असेसमेंट किए थे, तो उसमें बच्चों का जो सहायक यंत्र उपकरण एड सप्लायंसेज है जो दिव्यांग बच्चे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सहायक यंत्र उपकरण यथा व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, मोटराइज बैटरी चालित ट्राई साइकिल, क्रचेज, ब्रेल किट, श्रवण यंत्र, मानसिक मंद बच्चों के लिए TLM किट, तो ये सब सारे उपकरण वितरित करके जो चिन्हित किए गए थे पिछले साल, आज वितरण कार्यक्रम शिविर लगा के किया जा रहा है।
1: झारखंड सरकार द्वारा लघु खनिजों का चालान विपत्र के साथ उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से परेशान संवेदकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर राहत दिलाने की मांग की है। इस पर बात की संवेदक संघ के रितेश कुमार ने।
4: जो भी है हमारे यहाँ का एसोसिएशन, हम लोग डीसी मैम से आज मिले हैं, जिसमें 27 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया कैबिनेट का, जिसमें मैंडेटरी क्या है कि जो भी हम लोग माइनर मिडलर यूज करेंगे उसका चालान हम लोग को डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। तो इसमें काफ़ी माइनर मिडलर ऐसा है जो मार्केट में अवेलेबल तो है लेकिन चालान के साथ अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं और साथ में मटेरियल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से काम पूरा बाधित है। कंस्ट्रक्शन का जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है।
1: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ट्रेसलेस मतदाताओं का पता लगाने एवं उनका गणना प्रपत्र भरवा कर जमा लेने और डिजिटाइजेशन को लेकर पाकुड़ में 3 दिनों का विशेष शिविर लगाया गया। इस पर बात की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने।
5: ASDD लिस्ट जो है हमारा उसको फाइनल करना था, वो तो जहाँ के मतदान केंद्र में कुछ हमारे मतदाता है जो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं BLO के द्वारा, उसी के रिगार्डिंग मेडिकल सीजे DLA ग्रुप को भी बोला गया कि अगर ये ऐसे मतदाता ट्रेस होते हैं तो उनका फॉर्म हम लोग जल्दी भरवा दें। और चूंकि कुछ भारी संख्या में मतदाता 100 के अराउंड मिले हैं जिनके बारे में BLA 2 को भी जानकारी नहीं दी, तो एक बार हम लोग लास्ट प्रयास के तहत 2-3 दिन का कैंप जो है इस बूथ के विभिन्न एरिया में लगाएंगे ताकि अगर एक भी हो तो वो छूटे ली मिले।
1: पाकुड़ शहरी क्षेत्र में बीते 15 दिनों से शहरी जलापूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
0: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनना चाहा है कुचाई इच्छातु से भोलाराम लोहादा, लुद्री लोहादा, श्रुति लोहादा, सोमनाथ लोहादा, लालमुली लोहादा और व्यंजना लोहादा। ग्राम तोंडागाड़ी से मुकेश महतो, दिलीप महतो, विजय महतो, सुमन महतो, सूरज महतो, सुरेंद्र महतो और मुकेश बाबू। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मीका बीरक। अमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहनें, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। खरसवा पातिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। इसी गीत को सुनना चाहा है सोनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक और मकरू आचार्य। ग्राम कुड़ा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई और तारकेश्वर बहंदा। मोहल्डिया मेन रोड सोनवा से आप हैं नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष गीतेश, अन्नू तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीलपाणी प्रधान और नीकपाणी प्रधान। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चैबासा से आप हैं भोलाराम मधुर, मोहिनी मीरा मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी। बड़ी बाजार चैबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक नई पहली फिल्म का ये गीत यशुदास के स्वर में। इस गीत को पसंद किया है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। छोटा निंडी चैबासा से आप हैं बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है खरसवा गांव ढलाई किला से लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, वीबी सोए, सिनेमाई सोए, तनुजा सोए, राधिका सोए और पुष्पा सोए। न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु, टिंकू और मुन्ना। ग्राम हाड़ीदा से मानताराम सिंह कुंटिया। ग्राम पोंडाकाटा से आप हैं नरसिंह महली, सावन महली, रोकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, संजीव सोरेन, नंदिनी, गोपाल महली और एनएस महली। बड़ा निमडी चैबासा से आप हैं तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर। कुचाई बिद्री गांव से आप हैं केपी सोए, दुर्गमती सोए, सरिता सोए, रेशमी सोए, राजकुमारी सोए, विशाल सोए, सन्नी सोए और मुन्ना सोए। ग्राम सुराबेड़ा से बांसी सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुगमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार। बड़े बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू किरण, रोशनी, मुस्कान और परी नबीहा। गांव कीता सरेकिला से राधाकृष्ण गोप, राजेश महतो, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, विक्की गोप, सुनीता गोप, गीता गोप, रीता गोप, सुलेखा गोप और आराध्या गोप। चांडिल ग्राम हारोडी से तुलसीदास महतो, कल्पना, मनोरमा, दीनबंधु महतो, मनमोहिनी और साथी। अमला टोला चेपासा से आप हैं गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, आशीष, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृषि वास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। आप सबने सुनना चाहा है हीरो फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की।

हीरो फिल्म के इस गाने के बाद श्रोताओं सुनते हैं फूल और कांटे फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में। इस गीत को पसंद किया है ग्राम गिले लोहर से कोमल बेसरा, बसंती बेसरा, बनमाली बेसरा, सिद्ध कुमारी बेसरा, रमेश बेसरा, अन्नू और पूजा। बड़ा बम्बो सुपैसे से आप हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, देविन बाबू, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा नायक और सीमा। ग्राम जोजोकुड़मा से मनोज गागरई, बसंती गागरई, सोनाली गागरई, आयशा गागरई, रचना गागरई और जितेंद्र गागरई। आदर्श नगर सरेकला से आप हैं तनुश्री, बिट्टू, विक्की, किरण, गुलाब, उत्पला, शिवम, सुजाता और आरती। कठशिला से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बसंती भगत, सोना, रूपा, मोनिका, चांदी भगत, दादू भाई, आयुष भगत और शिवम भगत। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम महलीसाई से बीरबल महली, सरस्वती महली, प्रेमचंद महली, फूलमणि महली, शकुंतला महली, यशोदा महली, सुमांती महली और शांति महली। ग्राम डुंगरिया मलाजखंड मध्य प्रदेश से आप हैं मुन्ना पटले, माधुरी पटले, याचना पटले और दीपांशु पटले। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टिडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बोले नवा नुकन परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेंगे आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तब घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुतम बुरान सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरे में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
7: अन्याय में तुम दो बुंबई कोड़ा पटन में तुम घूमते कोड़ा अन्याय हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन में तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार सी कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तम दूर दूर गई तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काका मेरे मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिला आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: आपकी पसंद कार्यक्रम का आखिर में सुनते हैं।

इस गीत के साथ ही आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

के आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मो सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा हिंसा और नफरत नहीं थी बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं। मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13 के 3 में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम उप

मंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेपी की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ

पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य जी ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म तेरी मेहरबानियाँ से। आवाज़ें हैं अनुराधा पोटवाल और शब्बीर कुमार की। इस गीत के लिए फरमाइशी कथा में लिखा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। पीपरपारा पलचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तर कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। बुरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, कुमारी नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहरा और परी मूड़त। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सदियो दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी।

गंगा जमुना सरस्वती। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और पंकज उदास के स्वरों में। इस गीत को सुनना चाहा है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, तन्मय, बेबी अनिष्का और राधिका गजबिये। बिलागढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जवेंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तरनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तफा खान, राऊ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं चांदनी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत के लिए फरमाइशी खत हमें लिखा है ग्राम पंजौनिया जिला उजालाउन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चौंसालिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और आराध्या चौंसालिया। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहट्टी बरेली से आप हैं विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से बलीउल्ला फकीर, डब्लूल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से आप हैं बद्रवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी। धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी और मास्टर शानू ध्रुवंशी। ग्राम सुपैसे से इंद्रजीत तांती और मुरारी मोती। बठिंडा रोड डाबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। इसी गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं यस बोस फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है स्टेशन रोड बड़ा बम्बो से ममता प्रमाणिक, नमिता प्रमाणिक, जय कुमार महतो, संतोषी महतो, अंकिता महतो और विजय कुमार महतो। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर और प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर और अर्जुन गवाड़कर टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी द्वानी गवाड़कर परी। चारडुंगरी पिपिरिया जिला कबीरधाम से आप हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू और श्रीमती इंद्राणी माया साहू। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंचोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंचोर। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। धडीनादुरा महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही रजनीगंधा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के समाधान आपके पास है। टेली मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक

0: टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ. उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है.
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक के कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है. वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है. हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम.
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट.
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए. हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला. लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया. इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई. इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की. केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं.
4: आज राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदी नहीं है. माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है. कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है. ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं. ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है.
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे. ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है. इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया. बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं. कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है. स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की. श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए. ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है.
5: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है. उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, ताजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000

0: रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
2: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश सोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
3: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ

0: Wreaking havoc across its basin in Keonzhar, Jajpur and Bhadrak districts, while the flood situation has assumed alarming proportions in Bhadrak, Jajpur and Baleswar. In Mayurbhanj, incessant rainfall and swollen rivers have further aggravated the crisis. Official sources say nearly 380,000 people across 304 gram panchayats have been affected. Even as rescue and relief operations continue on a war footing, a fresh challenge looms with a medium flood expected in the Mahanadi from tomorrow following persistent rainfall in its upper catchment. Prakash for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Meanwhile, in Assam, the relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Shivasagar, Golaghat, Charaideo and Jorhat. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma and assured all necessary assistance to the flood-hit state. On the other hand, the first budget session of the Assam Legislative Assembly concluded today, 2 days ahead of schedule, in view of the devastating floods in the state. In Chhattisgarh, heavy rainfall over the past 2 days has disrupted normal life in several parts of the state. Our correspondent reports that rivers and streams are overflowing in many districts, while road connectivity to several villages has been affected.
2: In Chhattisgarh, more than 50 girl students were shifted to a safer location after water entered a girls' residential school in Pantora of Garyaband district. In Nagri block of Dhamtari district, a holiday was declared today in some schools due to water logging. Chief Minister Vishnu Dev Sai has directed all district collectors and other officials to remain alert and take necessary precautions. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for heavy rainfall in Balod and Kanker district during the next 24 hours. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall tomorrow over Madhya Maharashtra and West Madhya Pradesh. IMD also predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Lakshadweep. In Chhattisgarh, 8 Maoists, including 5 women cadres, surrendered before the police in Bijapur district today. Bijapur Superintendent of Police Umesh Gupta said the surrendered Maoists were carrying a total reward of 49 lakh rupees. The UN Human Rights Office has voiced concern over Islamabad's crackdown on peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Over 40 civilians were killed and several others injured in the firing by Pakistani forces on protesters during a march organized by the Joint Awami Action Committee from Rawalkot to Muzaffarabad on Monday. UN Human Rights Office spokesperson Jeremy Lawrence said the criminalization of a civil society organization and restrictions on public gatherings raise serious concerns about violations of rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. Tensions have escalated in West Asia after Iran and the United States reported fresh military exchanges. Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps today claimed that its aerospace force targeted a U.S. air base and the U.S. Central Command headquarters in Jordan with ballistic missiles. Meanwhile, the U.S. military said it intercepted multiple ballistic missiles launched from Iran in what it described as an attempted surprise attack on American forces in the region. Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. We have a report.
3: Sensex surged by 889 points to close at 77,655. Nifty gained by 265 points to settle at 24,250. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose over 0.8%, while the small-cap 100 index jumped nearly 1.5%. Meanwhile, in the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 21 paise to end at 95 rupees and 64 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashvani News.
1: At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, 9 Indian boxers have assured medals for the country after sealing semi-final berths. 5 pugilists, including Arundhati Chaudhary in women's 70 kg, Sakshi Chaudhary in women's 51 kg, Sachin in men's 60 kg, Ankush Pangal in men's 80 kg semi-finals and Narendra Berwal in men's 90 plus kg categories registered victories today. India's overall medal tally currently stands at 12, comprising 2 gold, 7 silver, and 3 bronze. Prime Minister Narendra Modi today congratulated weightlifter Harjinder Kaur on winning the silver medal in the women's 69-kilogram weightlifting event at the Commonwealth Games. The Prime Minister also congratulated long-distance runner Gulveer Singh on winning the silver medal in the men's 10,000 metres event. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insults to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assured medals for the country after sealing semi-final berths. That is all in the news at 9. Good night.
4: Ada, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तजाम हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। ओडिशा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन पर की गई कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। इस कानून में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार ठहराए गए अफराद की इमलाक को जब्त किए जाने समेत मुख्तलिफ अहम इल्तजाम हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज़ के खातिर हुकूमत के अज़्म का इयादा करता है।
5: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
4: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के इल्जाम का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत ने बार बार ये वजाहत की है कि कोई गोली नहीं चली और सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इससे कबल बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि नीट मामले पर तलबा का एहतजाज तशद्दुद या नफरत नहीं था, बल्कि नौजवानों का एक शदीद इजहार था और सभी सियासी पार्टियों को इसका एहतराम करना चाहिए। राज्यसभा ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। ये बिल कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। मुजवजा कानून कौमी तराने जनगणमन की तरह वंदे मातरम को कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करेगा। इसकी खिलाफवर्जी पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बिल को मंजूर किए जाने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
6: लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 जबकि राज्यसभा में قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیم بل 2026

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
0: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मानसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री है ये होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड कर देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5 साल 10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलिया है, तो हमने काफी हमारा

0: इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहला मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इस तरह हो रहा है, तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा, तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे है, सर्फेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सेटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूसली हमारे पास आज 50 राडार है, तो हमने इसमें से कंटिन्यूसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि ये इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है, खाली हम सैटेलाइट या रडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा वो, थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे, लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है, वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है। सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है, तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर, जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा, तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छे से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है, ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है, और उसके लिए हमारा सैटेलाइट रडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है, हमारा मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन, हमारा फिर डाटा एसिमुलेशन, न्यूमेरिकल मॉडल, फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे कम्बाइन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
2: आनंद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, कि टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी, और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहें, तो जो भी बारिश का समय होता है और पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार

0: उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित हल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं। और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहाँ जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेज हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारा जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है ये है तो थोड़ा सा बेहतर है, तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं हो रहा। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब हो रहे, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बस्ट टाइप का इवेंट, जो आपको भी पता है कि एक घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर मीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर स्टेट रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस। और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले 6 घंटे के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में ओडिशा के इंटीरियर ओडिशा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा। तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशिएंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज इसमें है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर सेट है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
0: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाएं। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिज हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ PNG है दिल्ली में, जैसे उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
1: डॉक्टर पटनायक, अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
2: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर रडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 रडार के नीचे ही था उसमें आज हमारा 50 रडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर रडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर कभी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो रडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने पता नाव कास्टिंग, तो ये रडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नावकास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअल्टी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है, तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है से रडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने अभी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं रडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटे पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटे के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटे पहले ये वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा रडार जो नेटवर्क और रडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं रडार रिलेटेड वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गांव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो वो एक्सपोज होते हैं तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा दो घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं,

0: कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्से में काफी मदद करता है हमारा रडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में है तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहाँ जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं, वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले एक महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
0: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ की तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफ़ी जो वेस्टर्न उड़ीसा में है, इंटीरियर उड़ीसा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज़्यादा हुआ है, उससे भी ज़्यादा हुआ है, बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफ़ी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भा एरिया में भी चेतावनी दिए है। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है एक दो दिन चलेगा, और जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए, तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है, और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 8% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, 1 जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15-25 दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी सीमित आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं।

0: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं। आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था, वहाँ अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहाँ हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
1: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में है तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे थराली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज दो वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है। तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट आता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ हैं या उलट गए हैं। तो ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहां भूस्खलन या भूधसाव की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
0: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारे मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
1: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी.आर. पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप

0: हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है।

FMK 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल।

इस गज़ल के साथ ही महफिल का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। रात के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

राजा हिंदुस्तानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं कुमार शानू, अलिशा चेन्नई और सपना मुखर्जी की।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं तेजाब फिल्म का ये गीत, नितिन मुकेश, अलका याग्निक और शब्बीर कुमार के स्वरों में।

तेजाब फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

0: पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम एक मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।